सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी FM शिमला। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं और अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
2: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान

0: सकता है क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart, Sanae Takaichi, in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. External Affairs Ministry said

भक्ति और प्रार्थना वो सेतु है जो मनुष्य को भगवान से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। पूरे दिन में एक बार ही सही, सच्चे मन से अपने प्रभु को याद करने से मन को अपार शांति मिलती है।

इसी भक्ति प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम हेमांजलि में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला, और आइए अब सुनते हैं मानस गान।

उधर शिव को पति रूप में पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की और इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे थे। उनकी समाधि भंग करने के लिए तब देवताओं ने कामदेव का आवाहन

किया। कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जगत के सभी चर अचर प्राणी मर्यादा भूल काम के वश हो गए। योगेश्वर तपस्वी कोई भी बचा ना रहा। अपनी सेना समेत कामदेव करोड़ों कलाएं करके हार गया, परंतु शिव की अचल समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प धनुष से अपने पांचों वाण छोड़े, जो सीधे शिव के हृदय में लगे। शिव जी की समाधि भंग हुई। कामदेव को देख उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। शिव का तीसरा नेत्र खुलते ही उसकी ज्योति ज्वाला से कामदेव पल भर में जलकर भस्म हो गया।

अभी आप सुन रहे थे तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, लक्ष्मी शंकर, रामकृष्ण चंद्रश्री और साथी संगीत रचना सतीश भाटिया की। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: कमर सिंह और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे देश गान। और अब FM शिमला पर वक्त हो चला है FM न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा। प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कृषि महत्व वाले 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI पंजीकरण मिल गया है। इसमें स्पीति का सीबकथॉर्न, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, मंडी की सेपूवड़ी, किन्नौरी टोपी, सेब और आभूषण शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि GI टैग मिलने से इन उत्पादों की मौलिकता व पहचान सुरक्षित रहेगी और इनकी मांग बढ़ने सहित रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विकसित भारत रोजगार और गारंटी ग्रामीण मिशन अधिनियम कल से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAM अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का एक नया अध्याय है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने कल लोकभवन शिमला में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई, अ स्टेप टुवर्ड्स ड्रग फ्री हिमाचल अभियान का शुभारंभ किया और इस पहल को नशा मुक्त हिमाचल के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। धर्मशाला में महापौर और उप महापौर के चुनाव में भाजपा ने नगर निगम की सत्ता हासिल कर ली है। भाजपा के शमशेर नेहरिया महापौर जबकि प्रेरणा गुलेरिया को उप महापौर चुना गया है। प्रदेश कांग्रेस आज से 30 जुलाई तक प्रदेश व्यापी पार्टी संगठन विस्तार अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने शिमला में बताया कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और प्रदेश के प्रत्येक पोलिंग बूथ, पंचायत व विधानसभा क्षेत्र तक आम लोगों और अन्य दलों के नेताओं को पार्टी से जोड़ना है। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: और अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला और अब FM शिमला पर ये वक्त है चिंतन का।

महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि अब शांत हो गई थी। शंखनाद थम चुका था। अस्त्र शस्त्र मौन हो चुके थे। युद्ध जीत लिया गया था, पर उस विजय में उल्लास नहीं था, केवल शोक था। हवा में चिंताओं का धुआं घुला हुआ था और धरती विधवाओं के विलाप से कांप रही थी। हस्तिनापुर का सिंहासन पांडवों के अधिकार में आ चुका था, किंतु उस राजमुकुट के नीचे असंख्य अपनों की अस्थियां दबी थीं। गुरु, भाई, पुत्र, सब के सब इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर गंगा तट पर खड़े थे। हाथों में जल था, आंखों में पश्चाताप। वे युद्ध में मारे गए परिजनों को तर्पण अर्पित कर रहे थे, पर उनका मन किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ था। उसी क्षण पीछे से माता कुंती की धीमी पदचाप सुनाई दी। झुकी हुई, कांपती हुई, आंखों में वर्षों का मौन और हृदय में दबा हुआ एक असहाय सत्य। उन्होंने भारी स्वर में कहा,

पुत्र, क्या सबको जलांजलि दे दी? फिर क्षण भर रुककर बोली, अब एक अंजलि और दो उस वीर के लिए जिसे तुम सब जीवन भर सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत करते रहे, कर्ण के लिए। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। माता, वो तो हमारा शत्रु था, दुर्योधन का साथी, उसके लिए तर्पण क्यों? तभी कुंती का संयम टूट गया, आंसू बह निकले। बोली, युधिष्ठिर, वो सूतपुत्र नहीं था, वो सूर्यपुत्र था, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता, मेरी कोख से जन्मा वो पहला पुत्र जिसे मैंने समाज के भय से त्याग दिया। ये शब्द युधिष्ठिर के लिए वज्रपात थे, जैसे समय ठहर गया हो, उनके हाथ से जलपात्र फिसल गया, स्मृतियों का तूफान उठ खड़ा हुआ। सभा में कर्ण का अपमान, अर्जुन का बाण और कर्ण का मौन सब जानते हुए भी वो चुप रहा। युधिष्ठिर का हृदय विदीर्ण हो उठा। तो क्या मैंने अपने ही बड़े भाई का वध कराया? उनका अंतर्मन चित्कार करने लगा, यदि ये सत्य पहले जान लिया होता तो ना ये युद्ध होता, ना ये विनाश। मैं राज्य त्याग देता, वन चला जाता। एक रहस्य ने पूरे वंश को जला दिया। अब शोक क्रोध में बदल चुका था, माता पर नहीं, उस समाज पर जिसने कुंती को चुप रहने के लिए मजबूर किया, और उस रहस्य पर जिसने महाभारत को जन्म दिया। युधिष्ठिर गंगा के जल में खड़े हुए, देह कांप रही थी, नेत्र ज्वाला से भरे थे। उन्होंने अंजलि में जल लिया और समस्त नारी जाति को साक्षी मानकर कहा, जिस प्रकार एक छिपे हुए सत्य ने आज संसार को रक्त से भर दिया, मैं ये श्राप देता हूं कि भविष्य में कोई भी स्त्री अपने गर्भ में कोई रहस्य ना रख पाए, ताकि फिर कभी किसी मौन की कीमत इतनी भयानक ना हो। ये श्राप द्वेष से नहीं, सत्य की पीड़ा से जन्मा था। युधिष्ठिर चाहते थे कि आगे का संसार रहस्य के अंधकार में ना डूबे। ये प्रसंग हमें तीन गहरे सत्य सिखाता है। पहला, कुंती की विवशता। एक माँ जो ममता और मर्यादा के बीच पिसती रही, समाज के भय ने उसे जीवन भर अपराध बोध में जकड़े रखा। दूसरी, युधिष्ठिर की पीड़ा। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए छिपाया गया सत्य सबसे बड़ा अधर्म होता है। उनका क्रोध उसी अधर्म के विरुद्ध था। कर्ण का महान त्याग, सब जानते हुए भी मौन रहना, केवल इसलिए कि भाइयों का अधिकार ना छीने, ये कर्ण को और भी महान बना देता है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकम शर्मा की। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। और अब आपको बता दें आज इस फ्रीक्वेंसी पर आप कौन सी प्रोग्राम्स किस समय सुन पाएंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे जानकारी और मनोरंजन का पिटारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। FM न्यूज हेडलाइंस के साथ खुद को अपडेट कीजिए सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर।

देश और दुनिया के ताजा समाचार सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और रात 9 बजे न्यूज एट 9। हिंदी में समाचार का वक्त रहेगा दोपहर 12 बजे, दिन में 1 बजे, 2:15 और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार आप सुन पाएंगे दोपहर 12:05 पर, दिन में 1:05 पर, शाम 7:05 पर और रात्रि 11:05 पर।

आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और रात 7:45 पर। रोजगार समाचार का वक्त रहेगा रात्रि 7:55।

आज सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। विषय है सिर और गले का कैंसर। डॉक्टर विकास फोतेदार से आप सुनेंगे डॉक्टर हुकम शर्मा की बातचीत।

कुदरत के रंग निहारिए हमारे संग सुबह 9:30 पर, सदाबहार गीतों का आनंद लीजिए सुबह 10 और रात 10:30 पर। पुराने फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं सुबह 11:05 पर, दिन में 3:10 पर सुनिए ओल्ड हिट्स प्रोग्राम और रात 8 भूले बिसरे गीत।

0: कुछ मेलोडियस म्यूजिकल नंबर्स एंजॉय कीजिए एफएम शिमला के साथ सुबह 9 बजे, दोपहर 12:10 पर और रात 8:30 पर। आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रमों में ईमेल बेस्ड प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। दिन में 1:10 पर कार्यक्रम रहेगा म्यूजिक मेल और इसी तरह रात 9:30 पर दिल की आवाज़ भी सुन, ये जो प्रोग्राम है इसमें भी आप ईमेल के जरिए शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने। हमारा मेल आईडी है airfmshimla@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लें, airfmshimla@gmail.com। संगीत के विविध मधुर रंगों से सजा सब रंग कार्यक्रम पेश किया जाएगा दिन में 2 बजे। यंग लिसनर्स के लिए प्रोग्राम युववाणी लेकर हाजिर होंगे दिन में 3:30 पर। आज शाम 4 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। बॉलीवुड की एंटरटेनिंग फिल्में, उनसे जुड़े किस्से, कहानियां और गाने एंजॉय कीजिए एक फिल्म से प्रोग्राम में रात 9:15 पर। एफएम शिमला पर गजलों की रुमानी महफिल सजेगी रात 10 बजे। लोक संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:32 पर, 11:30 पर, दिन में 2:30 पर और शाम 5 बजे सुनिए मंडियाली गीत। शाम 5:20 से आप सुनेंगे विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। तो ये हैं एफएम शिमला की आज के खास प्रोग्राम, जिन्हें एंजॉय करने के लिए आपको ट्यून इन रहना है हमारे साथ 103.7 MHz पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।
0: आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 MHz पर और ये वक्त है गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम का।

आज को कल से और बेहतर बनाने की, जो बाकी रह गए हैं काम उन्हें पूरा करने की, या जो ख्वाब अधूरे हैं उन्हें साकार करने की। तो FM शिमला के साथ आप भी इस सुहानी सुबह का आगाज कीजिए। ये है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला के साथ।

और नया सपना बुन सको तो जिंदगी कहीं से भी और कभी भी दोबारा शुरू की जा सकती है। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपना दिन शुरू कीजिए। ये है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला और आज की इस इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग म्यूजिकल जर्नी में मैं हूँ आपके साथ स्वाति डोकरा। सुनते रहिए FM शिमला, मुस्कुराते रहिए, इन गीतों के साथ गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों, इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन के किस पड़ाव पर खड़े हैं और आपकी उम्र कितनी है। अगर मन को किसी तरह मना सको

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: तारीखें बड़ी खास होती हैं और इतिहास से वर्तमान का सफर तय करते हुए कई महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी बनती है। तो आइए अब कार्यक्रम में जिक्र करते हैं 2 जुलाई से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का। 2 जुलाई की तारीख भारतीय इतिहास में खास जगह रखती है क्योंकि इसी तारीख को साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ। तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश आपसी तनाव को खत्म कर शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे। शिमला स्थित बांसकोट के कीर्ति कक्ष में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिस वजह से इसे शिमला समझौते के नाम से पहचाना जाता है। ब्रिटिश राज में ट्यूडर स्टाइल में बना बांसकोट आज लोक भवन और राजभवन के नाम से प्रसिद्ध है, जो हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल का आधिकारिक निवास भी है। साल 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता से गिरफ्तार किया और उन्हें 6 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया गया। 6 महीने के बाद नज़रबंद की अवधि समाप्त होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी की यात्रा का साहसिक कदम उठाया। बात करें ईयर 1757 की, तो उस वर्ष में भारत में प्लासी के युद्ध में बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु के साथ ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया को रेडियो जैसे नायाब आविष्कार का तोहफा देने वाले इटालियन वैज्ञानिक गुग्लियेल्मो मार्कोनी को 1897 में लंदन में रेडियो के लिए पहला पेटेंट दिया गया था। खैर, आज की तारीख से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों में और भी हैं बातें खास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप यूं ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आपने ट्यून किया है FM शिमला 103.7 MHz पर। यह है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला और कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे आज की तारीख से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। ईयर 1983 की बात करें तो उस वर्ष में भारत में मद्रास के निकट कलपक्कम में स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई ने कार्य करना आरंभ किया। साल 2002 में अमरीकी व्यापारी और रिकॉर्ड बनाने वाले विमान चालक जेम्स टी फॉसेट गुब्बारे से बिना रुके विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति बने। ईयर 2004 में महाराष्ट्र के मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ब्रिटिश काल में इस टर्मिनस को विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहचाना जाता था। ये स्टेशन अपनी शानदार विक्टोरियन गॉथिक शैली वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ये थे आज की तारीख से

0: किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। आज 2 जुलाई है और ये तारीख विश्व भर के खेल पत्रकारों के नाम समर्पित है, यानी आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस। ये दिन विश्व के खेल पत्रकारों को सम्मानित करने और उनके योगदान को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ईयर 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में की गई थी। खेल पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ खेलों की रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धियों को समाज तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। खेल पत्रकार खेल भावना को बढ़ावा देने, खेलों में पारदर्शिता बनाए रखने और अपने दर्शकों और श्रोताओं तक सही जानकारी देने का कार्य करते हैं। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड पर खेलते खिलाड़ियों के पीछे एक मजबूत आवाज होती है, जिसे कमेंटेटर या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहा जाता है। कार्यक्रम में बातें कुछ और भी हैं आपके साथ साझा करने के लिए। आप सुनते रहिए FM शिमला।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। दोस्तों, ये दुनिया ना हैरतअंगेज कारनामों से भरी पड़ी है और कभी कभी तो विश्व के किसी कोने से ऐसी घटना के बारे में पता चलता है जिसके बारे में यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसी ही हैरान करने वाली घटना है UFO देखना। हालांकि जो इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं वो तो इससे अग्री करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आज भी अनआइडेंटिफाइड

फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर विश्वास करना कठिन है। हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन विशेष रूप से 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुई यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है, जिसे यूएफओ इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना जाता है। वर्ल्ड यूएफओ डे उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और जिज्ञासु लोगों को प्रोत्साहित करता है जो ब्रह्मांड में अन्य जीवन के अस्तित्व की खोज में लगे हैं। ये दिन विज्ञान और खगोल शास्त्र में रुचि को प्रोत्साहित करता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की क्यूरियोसिटी ने इससे जुड़े कई पहलुओं को दुनिया के सामने रखा है। एलियंस क्या वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं।

लोगों को प्रोत्साहित करता है जो ब्रह्मांड में अन्य जीवन के अस्तित्व की खोज में लगे हैं। ये दिन विज्ञान और खगोल शास्त्र में रुचि को प्रोत्साहित करता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की क्यूरियोसिटी ने इससे जुड़े कई पहलुओं को दुनिया के सामने रखा है। एलियंस क्या वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इस एक सवाल पर से पूरी तरह से पर्दा उठना बाकी है, पर जब तक ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती रहेगी, ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज भी जारी रहेगी।

0: इसमें क्या होगा? इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला। सुन रहे हैं आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। हिमाचल प्रदेश अपने खुशगवार मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और ये प्रदेश पर्यटन गतिविधियों के साथ ही आस्था और श्रद्धा के देव स्थलों का केंद्र भी है। इस प्रदेश में लोग घूमने फिरने आते हैं, आराम करने आते हैं, यहाँ स्थित मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में आते हैं और सड़क, रेल और वायु मार्ग से सैलानियों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। इसी के मद्देनज़र हिमाचल की कांगड़ा घाटी और दिल्ली NCR के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की गई है, जिसकी सुविधा से हवाई यात्रा का जो समय है वो अब 1 घंटा 40 मिनट का रहेगा। सप्ताह के सातों दिन गगल एयरपोर्ट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए ये सेवा उपलब्ध रहेगी और विमानन कंपनियों ने अपने नए शेड्यूल वेबसाइट पर भी जारी कर दिए हैं। इस नई सुविधा का लाभ धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कांगड़ा, चामुंडा, ज्वालाजी और अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को मिलेगा। हालाँकि ये जो फ़्लाइट्स की जो टाइमिंग्स रहेंगी वो मौसम के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करेंगी और जैसे ही मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव होता है या कोई फ़्लाइट या कैंसिल होती है तो उसकी नोटिफिकेशन जो है बाकायदा जो विमानन कंपनियां हैं उनकी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी जाएंगी, तो आप अपडेटेड रहिए। बहरहाल इस इन्फॉर्मेशन के साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: और इसी गाने के साथ गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। आपको हम बता दें कि आज सुबह 8:45 पर FM शिमला पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, सिर और गले के कैंसर विषय पर डॉक्टर विकास फोतेदार से डॉक्टर हुकम शर्मा की बातचीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ और अब वक्त हो चला है FM न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा। राज्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और

0: कृषि महत्व वाले 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक सांकेतिक यानी GI पंजीकरण मिल गया है। इसमें स्पीति का सिबकथॉर्न, सलूनी सफ़ेद मक्का, चंबा मेटल आर्टल, सिरमौरी लोया, मंडी की सेपूवड़ी, किन्नौरी टोपी सेब और आभूषण शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि GI टैग मिलने से इन उत्पादों की मौलिकता व पहचान सुरक्षित रहेगी और इनकी मांग बढ़ने सहित रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम कल से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल किन्नौर जिला के पूह गांव में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पूह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुँचाने का आह्वान भी किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लगातार निगरानी और समीक्षा के साथ सरकार का फोकस इस बार बरसात के दौरान पिछले वर्ष जैसी आपात स्थिति से बचने का है। लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कें बंद होने, भूस्खलन और अन्य आपात स्थितियों में राहत व विकास बहाली कार्यों में किसी तरह की देरी न हो। मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं व आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की एक टीम को शिमला जिला में तैनात किया गया है। ये टीम अगले 3 माह के लिए APMC परिसर ढली में तैनात रहेगी। लगभग 30 सदस्यीय ये दल मानसून के दौरान भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरुद्ध होने, भवनों के क्षतिग्रस्त होने तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्य का संचालन करेगी। न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला।
1: और अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना

0: योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस6 से निचले स्तर के सभी

0: मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद।

0: फरहत, कमर्शियल गैस, एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं, लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए, जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the relationship.
3: During the first economic security dialogue held in Tokyo in November 2024, the two sides identified 5 sectors as priority sectors for strategic

0: 8 runs off 47 balls. Opening batter Abhishek Sharma also scored 59 runs, while Shivam Dubey remained not out at 42 runs. For England, Saqib Mahmood bagged 3 wickets. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age quoting Prime Minister Narendra Modi headlines, Government's digital push has transformed India, elaborating that 11 years of Digital India initiatives has redefined governance, empowered citizens and accelerated all-round development. Economic indicators flash green in June. Growth engine revving despite global roadblocks, writes the Economic Times. India's economy ended the first quarter of financial year 2027 on a strong footing, with various high-frequency indicators showing robust growth in June, reflecting resilience despite the West Asia war and other external headwinds. The Hindustan Times opens with the headline, ATF commercial LPG rates cut as crude prices ease, while the Hindu writes, commercial LPG prices reduced by 183 rupees per refill. The Times of India, under a picture of new Indian Army Chief General Dhirat Seth saluting his father, Lieutenant General Krishna Mohan Seth, retired, informs, General Seth said his aim would be to build a tech enabled, future-ready army capable of operating effectively across multiple domains, while the statesman informs, new army chief outlines Vijay vision, stresses modernization of army. And finally, the Times of India informs that University of Minnesota scientists, under a project called Spud Cell, build from scratch synthetic cells that can grow, feed and reproduce like a natural cell, claiming the work could in time lead to made-to-order living machines. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये है आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा। राज्य के 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पंजीकरण मिल गया है। इसमें स्पीति का सेबकथॉर्न, सलूनी का सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोहिया, मंडी की सेपूवड़ी, किन्नौरी टोपी और सेब और आभूषण शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की भौगोलिकता व पहचान सुरक्षित रहेगी और इनकी मांग बढ़ने सहित रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लगातार निगरानी और समीक्षा के साथ सरकार का फोकस इस बार बरसात के दौरान पिछले वर्ष जैसी आपात स्थिति से बचने का है। लोक निर्माण विभाग में फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेशों तक रद्द कर दी गई है। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सड़कें बंद होने, भूस्खलन और अन्य आपात स्थितियों में राहत व बहाली कार्यों में किसी तरह की देरी ना हो। मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं व आपात परिस्थितियों के प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की एक टीम को शिमला जिला में तैनात किया गया है। ये टीम अगले 3 माह के लिए APMC परिसर ढली में तैनात रहेगी। लगभग 30 सदस्यीय ये दल मानसून के दौरान भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरुद्ध होने, भवनों के क्षतिग्रस्त होने तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्य का संचालन करेगी। राजधानी शिमला की फल मंडी भट्टाकुफर में इस वर्ष सेब सीजन की शुरुआत अच्छे दामों के साथ हुई है। मंडी में कल पहुंचे डार्क बैरन गाला किस्म के सेब को 210 से 250 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव मिला है, जिससे बागवानों को इस बार बेहतर दामों की उम्मीद बढ़ी है। इस मंडी में रोजाना करीब 400 से 500 बॉक्स सेब पहुँच रहे हैं।

0: राजधानी शिमला सहित पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश भर में बादल छाए हैं और कई स्थानों पर सुबह से वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की चेतावनी जारी की है। आज और कल ज्यादा बारिश का अनुमान है, जिसके लिए सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप ट्यून इन है एफएम शिमला के साथ और थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक संगीत।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: और एफएम शिमला पर ये वक्त है लोक संगीत कार्यक्रम का, और कार्यक्रम का शुभारंभ कमलेश ठाकुर की आवाज़ में इस लोक भजन के साथ।

0: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पर आप अपने जिले की, अपनी बोली में, अपने व्यवसाय कारोबार के बारे में विज्ञापनों के माध्यम से सस्ते दामों पर प्रचार प्रसार करवा सकते हैं।
0: जी हाँ, आकाशवाणी शिमला पर शाम 4:20 से 7:05 तक प्रसारित होने वाले विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों में विज्ञापनों के प्रसारण हेतु आकाशवाणी शिमला से संपर्क करें।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लोक संगीत आप सुन रहे हैं इस समय, और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इस लोकगीत में सरला ठाकुर को।

0: इसी लोकगीत के साथ अभी के लिए लोक संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। सिर और गले के कैंसर विषय पर डॉक्टर विकास फोतेदार से आप सुनेंगे डॉक्टर हुकम शर्मा की बातचीत।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हम सिर व गले के कैंसर विषय पर चर्चा करेंगे, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में चिकित्सा जगत का एक अनुभवी नाम है डॉक्टर विकास फोतेदार जी। आप प्रोफेसर हैं कैंसर अस्पताल IGMC शिमला में, आकाशवाणी स्टूडियोज में इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर विकास फोतेदार जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कैंसर का नाम सुनते ही एक सिहरन सी होती है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना गंभीर ये रोग है, और हर व्यक्ति को इससे डर भी लगता है। लेकिन चिकित्सा जगत में जिस तरह से आज विकास हुआ है और जिस तरह से तरक्की हुई है, उससे तो ये लगता है कि अब कोई भी रोग असाध्य नहीं है, और कैंसर जैसा रोग जो कि एक समाज में बहुत बड़ा रोग माना जाता था, वो भी अब असाध्य नहीं है। बताएं आपके क्या स्थिति है कैंसर की।
2: शर्मा जी, पहले मैं बता दूं कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे शरीर की कोशिकाएं, जिनको हम सेल्स भी कहते हैं, अनियंत्रित तरीके से उनमें बंटवारा या डिवीजन होने लगता है और एक ट्यूमर और या कैंसर का रूप ले लेते हैं। दूसरा, आपका प्रश्न था कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसे डर लगता है। अब वो बात रही नहीं जो 15-20 साल 25 साल पहले की बातें होती थी कि नहीं जी कैंसर है तो कैंसर में अब बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया। पर कैंसर अब अगर हम जल्द से जल्द डायग्नोज करा पाए तो ये बिल्कुल ठीक होने वाला रोग है। अगर कैंसर समय पे डायग्नोज किया जाए तो इसका पूर्णतः इलाज पॉसिबल है। दूसरा है कि कैंसर किस कारण से होता है। मेन कारण तो हमारे जो कैंसर के अलग अलग कारण है
1: जी, जी।
2: जो आज हम सिर और गले के कैंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसका मेन मुख्य कारण है टोबैको या धूम्रपान, उसके कई प्रकार से जो धूम्रपान करते हैं वो एक मेन कारण रहता है। इसको हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे।
1: यानी हमारा खान पान, किस तरह का हम खाना खाते हैं, किस तरह का धूम्रपान करते हैं, या आगे चर्चा में जैसा आपने कहा कि किन कारणों से होता है, कारणों के ऊपर आएंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये बता दें आप कि आमतौर पर जो कैंसर के विभिन्न प्रकार हैं सिर और गले के कैंसर को छोड़कर, वो कौन कौन से हैं?
2: तो अगर आज हम सिर और गले के कैंसर के बारे में आज चर्चा होनी है, पहले सिर और गले के बारे में।

0: अगर हम अलग अलग इसमें अलग अलग साइट्स होती हैं, अलग अलग हमारे अंग होते हैं। अगर हम सिर और गले के कैंसर के बारे में पहली बात बोले तो पहले हम मुख का कैंसर, जिसको हम ओरल कैविटी कैंसर कहते हैं, इसमें होंठ का कैंसर होता है, जीभ के आगे वाले हिस्से का कैंसर होता है, जीभ के नीचे जिसको हम फ्लोर ऑफ द माउथ कहते हैं, और बक्कल म्यूकोसा या गाल के अंदर वाला हिस्सा, इसको हम ओरल कैविटी कैंसर कहते हैं या मुख का कैंसर कहते हैं। इसके अलावा ओरोफेरिंजियल कैंसर होता है, जिसको ओरोफेरिंग्स हम कहते हैं, जो टेक्निकल टर्म है। इस ओरोफेरिंजियल कैंसर में मुख्यतः हम जीभ के पीछे वाला हिस्सा है, जिसको हम बेस ऑफ टंग कहते हैं, टॉन्सिल का कैंसर मेन है इसमें, जो साइट्स हैं जो ओरोफेरिंजियल कैंसर है। इसके अलावा नेजोफेरिंजियल कैंसर, जो नाक के पिछले वाला हिस्सा होता है, वो एक एरिया, उसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स, इसका टेक्निकल नेम नेजोफेरिंग्स, वो नाक के पिछले वाला हिस्सा, उनमें नेजोफेरिंजियल कैंसर भी कॉमन है। इसके अलावा हाइपोफेरिंजियल कैंसर या हाइपोफेरिंग्स का कैंसर होता है, जिसमें हमारा पायरीफॉर्म साइनस, वो कुछ सिर के या गले के पीछे वाले हिस्से में कुछ कुछ अंग होते हैं, उनमें ये कैंसर कॉमन देखा। ये मुख्यतः देखे गए हैं कि ये सिर और गले के कैंसर के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स माने जाते हैं।
1: डॉक्टर विकास, आपने क्योंकि मुख के लगभग सभी अंगों के नाम लिए, हमारे मुख में एक और महत्वपूर्ण अंग है हमारे, वो है दांत।

0: अलावा हाइपोफेरिंजल कैंसर या हाइपोफेरिंग्स का कैंसर होता है, जिसमें हमारा पायरीफॉर्म साइनस वो कुछ सिर के या गले के पीछे वाले हिस्से में कुछ कुछ अंग होते हैं, उनमें ये कैंसर कॉमन देखा गया। ये मुख्यतः देखे गए हैं कि ये सिर और गले के कैंसर के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स माने जाते हैं।
1: डॉक्टर विकास, आपने क्योंकि मुख के लगभग सभी अंगों के नाम लिए, हमारे मुख में एक और महत्वपूर्ण अंग है हमारे, वो है दांत
0: जी।
1: क्या दांतों में भी कोई समस्या अगर होती है तो वो भी कैंसर में कभी परिवर्तित हो जाते हैं?
0: बिल्कुल हो जाती है, मगर दांतों का हम अलग ग्रुप बना लेते हैं, उनको हम हेड एंड नेक कैंसर से अलग रख लेते हैं, उनका वो डेंटल इसमें आ जाते हैं। है तो सिर और गले का ही अंग है, मगर उनको हम सिर और गले के कैंसर में नहीं गिनते हैं, मगर क्योंकि वो मुख का पार्ट है, कभी कभार ऐसा होता है कि उनमें अगर कभी कभार कैंसर होते हैं, वो मुख के कैंसर में ही गिना जाता है।
1: तो इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंसर होंगे जो कि आमतौर पर महिलाओं और पुरुषों में एक समान होते हैं, या क्या फर्क होता है दोनों में?
0: अगर हम जनरल कैंसर की बात करें तो महिलाओं में जो अंग होते हैं, जैसे उनके ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन है, बच्चेदानी के मुख का कैंसर बड़ा कॉमन देखा गया, और बाकी जो पुरुषों में देखा गया प्रोस्टेट का कैंसर पुरुषों में कॉमन देखा जाता है, मगर कुछ अंग जो दोनों में होते हैं, फेफड़े का कैंसर वो पुरुषों और महिलाओं में भी होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत का कैंसर ये महिलाओं और पुरुषों में भी होता है, और वैसी सिर और गले के कैंसर दोनों महिलाओं और पुरुषों में भी पाए जाते हैं। हाँ, ये पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं।
1: तो जब भी कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होने के लिए आगे बढ़ता है या उसको ये बीमारी होने की संभावना रहती है, स्पेशली हम सिर व गले के कैंसर की जो आज चर्चा कर रहे हैं, इसमें किस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति को नजर आने लगते हैं या अनुभव करता है कोई भी व्यक्ति?
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न शर्मा जी आपने पूछा। अगर जनमानस को इन लक्षणों के बारे में पता चल जाए तो शायद जल्द से जल्द हम उनका डायग्नोज कर पाते हैं, पूर्णतः ठीक हो जाता है। अगर हम शुरुआत में लें तो अगर हम पहले मुख का कैंसर, जैसे हमारे यहाँ मुख का कैंसर बड़ा कॉमन है इंडिया में, हमारे कुछ कुछ स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनमें मुख के कैंसर के बहुत बड़े ज्यादा केस आते हैं। सबसे बड़ा लक्षण जो होता है, कभी कभार सफेद दाग और लाल दाग, जिसको हम लीकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं, ये कॉमन लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा मुख में जो जीभ है, जीभ के या गाल के अंदर वाले हिस्से में कोई अल्सर हो या कोई घाव हो जो बिल्कुल काफी समय से ठीक ना हो रहा हो, हमेशा सोचना चाहिए कहीं ये मुख का कैंसर ना बने। मैं ये यहाँ नहीं बोलता हूँ किसी के मुख में घाव है तो वो कैंसर हो, पर हाँ, अगर स्मोकिंग या धूम्रपान की हिस्ट्री है, अल्कोहल या शराब पीने की हिस्ट्री है, तो जरूर हमेशा शक करना चाहिए, नजदीक से नजदीक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करेंगे लैरिंजियल कैंसर, जिसको स्वर नाली के कैंसर कहते हैं, उनमें अगर कोई व्यक्ति जो धूम्रपान करता हो या शराब का सेवन करता हो या गुटखा खाता हो या खैनी खाता हो, जो कॉमन है कई प्रदेशों में, हमारे प्रदेश में बड़ा कम है, तो उनमें देखा जाता है स्वर नाली के कैंसर में आवाज में बदलाव होना या आवाज का फटना, तो ये कॉमन लक्षण देखे जाते हैं। कभी कभार इन मरीजों में गले के गांठें बढ़ जाती है, जिसको हम लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, वो कभी कभार बढ़ जाते हैं, ये देखा गया कि स्वर नाली के कैंसर के लक्षण है। इसके अलावा ओरोफेरिंजियल कैंसर, जिसमें हम जीभ के पीछे वाला हिस्सा, जिसको हम बेस ऑफ द टंग और टॉन्सिल कहते हैं, उनमें भी कभी कभार खाने में दिक्कत हो या निगलने में दिक्कत हो, तो ये कॉमन लक्षण देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई उनमें भी आवाज में बदलाव हो या आवाज का फटना हो या गले की गांठें बढ़ जाती हैं या गले के दोनों साइड की कभी कभार गांठें बढ़ जाती है, ये जरूर कभी कभार शक कर लेना चाहिए कि कहीं ये कैंसर की वजह से ना हो। मगर यहाँ मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कभी कभार गले की गांठें बढ़ जाएं, वो हमारे देश में एक कॉमन डिजीज है जिसको तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इनमें भी गांठें बढ़ जाती है, मगर हाँ, अगर कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है, जरूर शक कर लेना चाहिए कहीं ये कैंसर ना बन रहा हो।
1: जी, आवाज की आपने बात की कि आवाज में बदलाव होता है, कई बार जैसे आवाज में एक भारीपन सा आ जाता है
0: जी,
1: तो क्या ये भी लक्षण होता है?
0: मैं अर्ली लक्षण में हो सकता है, मगर अगर आपकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है और काफी समय तक 15 साल से आप सिगरेट या धूम्रपान का सेवन करते हो, हमेशा सोचना चाहिए कहीं ये कैंसर ना बन रहा होगा। आवाज बदलने के बहुत कारण है, लैरिंजाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें आवाज बदल जाता है, वो हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाता है अगर दवाई दुई करने, पर काफी समय तक आवाज में बदलाव आए और वो दवाई खाने के बावजूद भी ठीक ना हो, तो जरूर अपना चेकअप जरूर करवाना चाहिए।
1: डॉक्टर विकास, जैसे आपने जो तमाम ये लक्षण बताए ना, जैसे कोई सफेद दाग है, कोई रेड सा कोई स्पॉट आ जाता है मुख में, हमारे होंठों पे या जीभा पे, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक उसमें दर्द नहीं होता ना, तो कोई भी आम व्यक्ति जो है उसको शक की निगाह से ना तो देखता है और ना वो डॉक्टर्स के पास जाता है, क्योंकि दर्द नहीं है, सोचता है कि ये तो वैसे ही बढ़ गया होगा। इस स्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्ति को?
0: तो जैसे मैंने एक लक्षण के बारे में गिना दिया, मैं ये 100% नहीं बोल पाता कि ये कैंसर की वजह से ही है, कभी कभार दर्द हो या नहीं हो, मगर मेरी हमेशा हर किसी के लिए सुझाव ये है कि अपना चेकअप जरूर करें। अगर हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में ये घाव ठीक नहीं हो रहा हो या अल्सर हील नहीं हो रहा हो, जरूर अपना चेकअप नजदीक से नजदीक डॉक्टर या ENT स्पेशलिस्ट से जरूर करवाएं। तो मैं ये 100% नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं यही कैंसर ही है, पर हाँ, अगर समय रहते चेकअप करवाया जाए, हो सकता है ना कैंसर ना भी हो, मगर कभी कभार हम देखते हैं 10 में से 1 आदमी को कभी कभार

0: कैंसर के लक्षण भी ऐसे ही मिलते जुलते होते।
1: जी, तो जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था कि कैंसर का नाम सुनते ही जो है ना व्यक्ति डर जाता है, तो साथ ही आपने ये भी एक बहुत अच्छा लोगों को सुझाव दिया कि अगर समय पर इसका चेकअप हो जाए, डायग्नोज हो जाए और आपका इसका इलाज शुरू हो जाए तो ये पूर्णतया बिल्कुल आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ठीक हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो चेकअप तो जरूर करवाना
0: बिल्कुल
1: चाहिए हमारे श्रोताओं को, और शक की नजर से जरूर देखना चाहिए एक बार
0: बिल्कुल
1: कैंसर होने के, अगर मुख और सिर के कैंसर की हम बात करें। खैर, थोड़ा सा सिर के लक्षणों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं इससे पहले कि हम कारण जाने दोनों ही कैंसर्स के बारे में। क्या सिर में अगर कैंसर है तो उसके भी कोई लक्षण दिखाई देते हैं?
0: तो शर्मा, जैसे मैं बताया, इसको सिर और गले के कैंसर में मैंने ये गिना दिया आपको कि कौन कौन से साइड्स होते हैं। मुख का कैंसर, जिसको ऑरल कैविटी कैंसर कहते हैं, ऑरोफेरिंजल कैंसर, हाइपोफेरिंजल कैंसर, नेजोफेरिंजल कैंसर और लैरिंजल कैंसर,
1: जी,
0: ये मुख्यतः सिर और गले के ही कैंसर गिने जाते
1: जी
0: हैं।
1: लेकिन सिर में जैसा हमारे कोई कई बार हम सुनने में आता है एक ब्रेन ट्यूमर,
0: जी,
1: वो क्या चीज है?
0: मगर शर्मा जी, ब्रेन ट्यूमर हम सिर और गले के, इवन दो आप ब्रेन जो है हमारा, जो मस्तिष्क है वो हमारे सिर में ही आता है,
1: जी,
0: मगर उनको ब्रेन ट्यूमर्स को हम अलग से क्लासिफाई
1: ये
0: कर
1: अलग
0: लेते हैं,
1: श्रेणी है।
0: अलग श्रेणी है, मगर
1: जी
0: उनको
1: जी
0: हम क्लासिफाई इसमें सिर और गले के कैंसर में नहीं करते। वैसे आंख के में जो ट्यूमर होते हैं
1: जी जी
0: उनको भी हम अलग श्रेणी में डिफाइन करते हैं ये, और थायराइड का कैंसर है इनको भी हम अलग श्रेणी में, इवन दो ये अंग कुछ एक्सेप्शंस हैं सिर और गले के, जहां हम इनको सिर और गले के कैंसर में नहीं गिनते हैं,
1: जी
0: इनको हम अलग श्रेणी में गिनते
1: जी
0: हैं।
1: जी क्योंकि एक आम श्रोता होने के नाते हम तो यही समझेंगे ना जी, क्योंकि आपने जैसे मुख और हम सिर की बात कर रहे हैं तो दांत हमारे मुख का एक हिस्सा
0: अंग
1: है,
0: है,
1: और वैसे ही अगर
0: मस्तिष्क है,
1: ब्रेन की बात करें वो भी
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: जी,
1: सिर का
0: आंखें
1: हिस्सा है,
0: हैं,
1: आंखें हैं,
0: बिल्कुल जी,
1: कान है, नाक
0: मगर
1: है, तमाम। हाँ
0: एक्सेप्शन से हम ये तीन चार अंग जो है, ब्रेन, आंख के ट्यूमर्स, थायराइड कैंसर, ये हम अलग श्रेणी में करते हैं, इवन दो
1: जी,
0: ये सिर और गले के पार्ट है।
1: कारण क्या रहते हैं कैंसर होने के?
0: सिर और गले के कैंसर में अगर आप मुख्यतः कारण देखिए, अगर आप 90% लोगों में जहां जिनके सिर और गले के कैंसर होते हैं, प्रमुख कारण है धूम्रपान का, धूम्रपान का सेवन, मतलब कि स्मोकिंग,
1: जी
0: स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, मैं स्मोकिंग अब ये नहीं बोल पाऊंगा कि स्मोकिंग खाली सिगरेट स्मोकिंग, स्मोकिंग अगर आप हुक्का कोई पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, गाँव गाँव में अभी भी कई जगह चलता है कि हुक्का भी पी लेते हैं या पाइप स्मोकिंग होते हैं, और कुछ कुछ कुछ जगहों पर हम देखें पान मसाला गुटखा, ये मुख्य कारण है मुख्य कैंसर के, जो पान मसाला गुटखा स्मोकिंग, खैनी देखते हैं अभी भी कई जगह खैनी का प्रयोग करते हैं कई लोग, ये मुख्यतः मुख्य कारण है स्मोकिंग किसी भी रूप में, मतलब धूम्रपान का प्रयोग किसी के रूप में, वो है सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, पान मसाला हो, पहले पाइप स्मोकिंग भी किया करते थे, इसके अलावा अल्कोहल या शराब का सेवन, ये शर्मा जी मुख्य कारण है सिर और गले के कैंसर।
1: जी,
0: अगर शराब और
1: धूम्रपान वगैरह,
0: धूम्रपान से बचा जाए तो मुझे लगता है सिर और गले के कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम से रह जाते हैं।
1: तो डॉक्टर विकास, हम धूम्रपान को सिर्फ जो बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं वही लें या किसी भी प्रकार का धुआं हो सकता है?
0: मेनली तो देखा जाता है इन चीज़ों, क्योंकि ये डायरेक्ट धुआं हो जाता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इनमें धूम्रपान, बीड़ी और सिगरेट का, इन लोगों का हुक्का, ये मेन कारण देखा है, क्योंकि यही टच में आते हैं हमारे सिर और गले के, जैसे मुख में सिगरेट पीना तो मुख से ही पीते हैं, होंठों में से पकड़ के धुआं अंदर लिया जाता है, वो पूरा वो जहरीला धुआं हमारे मुख में पूरा फैल जाता है, तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल में उनमें कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं उस धुएं से, हमारे म्यूकोसा या अंदर की परख ऐसी बदल जाती है कि वो कैंसर का रूप ले लेती है।
1: जी, जैसे आमतौर पर गृहिणियाँ होती हैं, धुएं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, चूल्हा जो जलाती
0: जी
1: हैं उनको भी संभावना हो सकती है, या हम धूप अगरबत्ती वगैरह का बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल घरों में करते हैं तो वो भी एक तरह का धुआं ही है, क्या ये भी कारण बन सकते हैं?
0: उनको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उनको हम ये नहीं बोलते कि निजी, उनमें उनमें देखा गया कि सिर और गले के कैंसर से ज्यादा उनमें फेफड़ों का कैंसर ज्यादा होता है,
1: जी
0: जो ये चूल्हा या कोई सेकंड हैंड स्मोक
1: जी
0: या कोई पैसिव स्मोकिंग से कोई पी रहा हो घर में, उनकी वजह से ये देखा गया है सिर और गले के कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो
1: जी
0: मेरा सबसे सुझाव है, अगर घर में कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा हो तो उनको बोले कि आप बीड़ी सिगरेट ना पिए, या ऐसी जगह पिए जहां बाकी परिवार के
1: और
0: सदस्य
1: विशेषतर
0: ना बैठे
1: छोटे
0: हो,
1: बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत हो
0: छोटे
1: सकती
0: बच्चे,
1: है।
0: बुजुर्गों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी।
1: जी, डॉक्टर साहब, फिर अब निदान की ओर आते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आता है, उसका चेकअप शुरू करते हैं,
0: जी
1: तो कैसे आप ये इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये गले या सिर का कैंसर है?
0: शर्मा, जैसे मैंने लक्षण गिना दिए, कोई सफ़ेद दाग या लाल दाग या ऐसा कोई घाव या कोई अल्सर हो या आवाज़ में बदलाव हो, ये मैंने जो मुख्यतः लक्षण गिनाए, या गले में गांठें बढ़ जाती हैं जिनको हम नेक नोड्स भी कहते हैं, अगर इन लक्षणों से कोई मरीज आए तो हम उनका ओपीडी बेसिस पहले चेकअप कर लेते हैं। अब उनका मुख का पूरा चेकअप होता है, ओरोफेरिंग्स का चेकअप होता है, और इनके चलते लैरिंगोस्कोप होता है जिसमें हम अगर स्वर नाली के अंदर देखते हैं कि अगर कोई वहाँ अल्सर बना हुआ या कोई वहाँ ग्रोथ है, उस ग्रोथ को हम

0: टेलीस्कोप से देखते हैं। लेनिस्कोप एक ऐसा, एक मान लीजिए एक एंडोस्कोप ऐसा है जो उनमें हम स्वर नाली के अंदर हम देख लेते हैं कि कोई बीमारी है या नहीं है। इन टेस्ट के चलते फिर अगर हमें कभी शक लगे तो हम उनके यहाँ से बायोप्सी ली जाती है, उस बायोप्सी को हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। जब तक वो टेस्ट आ जाए तब तक हम इनका ब्लड टेस्ट भी करते हैं, छाती के एक्सरे करा लेते हैं, या कभी हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है सिर और गले का, या कभी कभार हम पेट स्कैन का भी यूज करते हैं कि हमने देखना कि बीमारी लोकलाइज्ड है या कहीं फैली हुई है। तो ये मुख्य देखे जाते हैं कि टेस्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से हम इन मरीजों का डायग्नोज कर पाते हैं ये कैंसर है या कैंसर नहीं है, और अगर है तो किस स्टेज का कैंसर है।
1: जी, तो फिर जब इलाज शुरू होता है तो सुनने में आता है जैसे कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी वगैरह, ये किस तरह के इलाज हैं?
0: तो अगर शर्मा जी, जैसे मैंने बोला कि हम ये स्टेज कर लेते हैं, जब हमें अगर अर्ली स्टेज है, अगर वह स्टेज वन और स्टेज टू की डिजीज है, कभी कभार हम मेन मुख्य तरीका है जो कैंसर से लड़ने का है, या तो वो शैली चिकित्सा है जिसको हम सर्जरी कहते हैं, या रेडिएशन है इनको हम विकिरण से ट्रीटमेंट कहते हैं, या कीमोथेरेपी है या दवाइयों के माध्यम से, या अब लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी आई हुई है मगर वो देखा गया कि एडवांस स्टेज में दी जाती है अगर वो एडवांस स्टेज की डिजीज हो। तो अगर अर्ली स्टेज हो, अगर स्टेज वन और स्टेज टू है, मुख्यतः सर्जरी से किया जाता है। जो अगर वहाँ कहीं कैंसर है तो उस कैंसर को शैल्य चिकित्सा के माध्यम से निकाला जाता है, मगर वो मैं फिर बता दूं अर्ली स्टेज डिजीज में। अगर लोकली एडवांस एडवांस डिजीज है तब उनमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी का जो प्रयोग, करीबन 6 या 7 हफ्ते तक रेडिएशन देते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं उसमें कितना रेस्पॉन्स आया। एडवांस डिजीज में जैसे आपने बोला इम्यूनोथेरेपी एक नई पद्धति है ट्रीटमेंट की जो हम अपने मरीजों को देते हैं जहां हमें लगता है कि कई जगह बीमारी फैली हुई है, उनमें हम ये इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। जी,
1: तो आखिर में आपका कोई विशेष सुझाव या लोगों को इससे बचने के लिए कोई आप संदेश देना चाहेंगे?
0: लोगों को और खासतौर यंग जनरेशन में ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई इनमें से कोई लक्षण हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। और दूसरा है कि जो कारण है इसके मेनली स्मोकिंग या धूम्रपान का, अगर कोई कर रहा हो तो धूम्रपान रोक दें, धूम्रपान ना करें। अगर इसके बारे में भी इनके साइड इफेक्ट्स में, अब यहाँ मैं बता दूं धूम्रपान से खाली सिर और गले के कैंसर नहीं होते, फेफड़े के कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर, छोटी आंत और बड़े आंत के कैंसर, ये कॉमन कैंसर देखे जाते हैं। अगर इन लक्षणों से कोई ग्रसित हो जल्द से जल्द अपने नजदीक से नजदीक डॉक्टर से चेकअप करा ले। अगर हम ये डायग्नोज समय पे किया जाता ये जो सिर और गले के कैंसर पूर्णतः ठीक होने वाले कैंसर होते हैं।
1: जी, डॉक्टर विकास पोतेदार जी, आप आकाशवाणी स्टूडियोज में हैं। सिर व गले के कैंसर पर आपने विस्तार से श्रोताओं को जानकारियां दी। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम। सिर और गले के कैंसर विषय पर डॉक्टर विकास फोतेदार से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर हुकम शर्मा। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। शुक्रवार यानी 3 जुलाई को प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी, जिसका विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार को यानी कल 3 जुलाई को प्रातः 8:45 से 9:15 के मध्य फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2808034 और 2808152। 0177 है शिमला का STD नंबर। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

0: सुबह हो या शाम आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और इस फ्रीक्वेंसी पर एंटरटेनमेंट का ये म्यूजिकल सफर यूं ही जारी रहेगा। इन म्यूजिकल

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन-जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, यह है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला। और अब आपको बता दें आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

शास्त्रीय संगीत पर आधारित सुरबेला कार्यक्रम में आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे श्री गंगा प्रसाद पाठक द्वारा गाया राग तोड़ी। आज सुबह 10 बजे हेलो रिमझिम प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से और सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गाने। ये रहेगा कार्यक्रम लाइव फोन इन हेलो रिमझिम। आज सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार एकांश की प्रस्तुति। NCERT द्वारा प्रायोजित उमंग कार्यक्रम सुनना ना भूलें सुबह 11:30 पर। महिला सम्मेलन कार्यक्रम का वक्त रहेगा दोपहर 12:20। किसान बागवान सुनेंगे दिन में 2 बजे सुनहरी किरणें और रात 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम। कुछ नए पुराने फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए दिन में 1:10 पर कार्यक्रम रहेगा सैनिकों के लिए। जिले की चिट्ठी के साथ हाजिर होंगे दिन में 3:05 पर। रात 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम जिसमें आज के कलाकार होंगे जयप्रकाश कंडारा। गजलों का हसीन गुलदस्ता पेश किया जाएगा रात 9:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पर आप सुनेंगे कंट्री वाइड और रात 9:45 पर इनसाइट्स।

0: में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण। लोक संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 11:15 पर, दिन में 2:30 पर, रात 8 बजे धारा गीत कार्यक्रम में। आज आप सुनेंगे शांति हेटा, कृष्णलाल सहगल और यशोदा देवी के गाए लोकगीत। शाम 4:20 पर चंब्याली कार्यक्रम के साथ आरंभ होंगे विभिन्न हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। 4:50 पर सुनिए मंडयाली कार्यक्रम। 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम। 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम। तो ये हैं आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला से भी सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचार DTS सेवा और न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। इस संदेश के बाद
2: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रूपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार की सब कमेटी ने सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां करने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपये घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मॉनसून के दौरान शिमला में 3 महीने तैनात रहेगी एनडीआरएफ की टीम। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिशें की गई। अब इस सिफारिश पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। इन स्कूलों में तैनाती के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई चयन परीक्षा में 6,084 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इन स्कूलों में लगभग 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे इन सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण अभी तक लगभग 500 विद्यार्थी इन स्कूलों को छोड़ चुके हैं। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की है। तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की दरों में भी 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर 2,930 रुपये में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने पर्यटन नगरी धर्मशाला को नया रंग रूप दे दिया है। बीते 5 सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला में जहां लोगों को मेट्रो शहरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है, वहीं धर्मशाला शहर विकास के मॉडल के रूप में भी उभरा है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने 5 वर्षों में धर्मशाला की तस्वीर बदल दी है। शहर में प्रस्तावित 80 विकास परियोजनाओं में अधिकांश पूरी हो चुकी हैं, जबकि स्मार्ट रोड, क्लब हाउस के साथ फुटबॉल ग्राउंड और आईएसबीटी के पास पार्किंग जैसी कुछ परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के सीईओ जफर इकबाल ने बताया कि धर्मशाला

0: राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में पहचान मिली है। नड्डी और गमरू में रूट जोन ट्रीटमेंट प्लांट तथा 15 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और ई मोबिलिटी को भी बढ़ावा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए इन कार्यों ने धर्मशाला को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और नागरिक सुविधाओं से समृद्ध शहर के रूप में स्थापित किया है। आने वाले समय में शेष परियोजनाओं के पूरा होने के साथ धर्मशाला स्मार्ट और सतत शहरी विकास का एक और मजबूत उदाहरण बनकर उभरेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: शिमला जिले में मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की एक टीम को शिमला में तैनात किया है। ये टीम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए शिमला के ढली में तैनात रहेगी। इस टीम में 30 सदस्य शामिल हैं। शिमला की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने कहा कि जिला प्रशासन मानसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता भाजपा के संपर्क में है और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक है। केशव चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने कहा है कि 1 महीने में 8 से 10 हजार भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। केशव चौहान ने कहा कि भाजपा को छोड़ कांग्रेस अपनी चिंता करे क्योंकि राज्य की जनता कांग्रेस के झूठ से तंग आ चुकी है।
2: मेरा कांग्रेस के महासचिव से आग्रह है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करे, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दे। अभी प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय में उनकी हार हुई है, उसको छुपाने का, उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार के प्रोपोगंडा कर रही है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हुई। इस दौरान मंडी जिला के ओट के पास पहाड़ से गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज चंबा जिले के पांगी और लाहौल घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। इधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिले में ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ आने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सचेत रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। इधर लोक निर्माण विभाग ने मानसून को देखते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। चंबा जिला उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह ने जिले के सभी बागवानों से सरकार की मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बदलते मौसम के कारण ओलावृष्टि, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बागवानी को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए मौसम आधारित फसल बीमा एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। डॉक्टर प्रमोद शाह ने कहा कि बागवान इस योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। यदि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण फसलों को नुकसान पहुंचता है तो बीमित बागवानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है।
3: हम लोगों की तो यही सलाह देती है मैं फार्मर को कि अपना जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको टाइमली उसको आप जरूर अवेल करें क्योंकि मौसम का कभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अनुमान कब इसका बदलाव आ जाए।
1: हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत बलोह की सरपंच लता देवी का इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला राजनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। इस राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यक्रम के तहत लता देवी को भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का मौका मिला। लता देवी ने कहा कि एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सरपंच के रूप में लोकतंत्र के सर्वोच्च विधायी मंच को निकट से देखने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का ये अवसर उनके सार्वजनिक जीवन का अत्यंत प्रेरणादायी और गौरवपूर्ण

0: क्षण रहा। प्रदेशव्यापी एंटी चिट्टा अभियान के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स और जिला पुलिस व औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में दवा विक्रेता, मेडिकल की दुकानें, औषधि थोक विक्रेता और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का सघन निरीक्षण किया गया। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, लाहौल चंबा में तीन जगह बादल फटे, सड़कें ध्वस्त, मंडी में पत्थर लगने से महिला की मौत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अंततः पूरे प्रदेश में पहुंचा मानसून, लाहौल स्पीति के जामलना में, चंबा के साहों में बादल फटने से नुकसान। पंजाब केसरी लिखता है, सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा में आज भारी वर्षा की चेतावनी। शिमला में 50 लाख के जेवर चोरी मामले में पंजाब से दो महिलाएं गिरफ्तार, 40 तोला सोना भी बरामद। शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, शिमला पुलिस को सीसीटीवी और तकनीकी जांच से मिला आरोपियों का सुराग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार की सब कमेटी ने सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट के आधार पर नियुक्तियां कराने की सिफारिश की। तेल कंपनियों ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 183.50 रुपये घटाई। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन ने बदली धर्मशाला की तस्वीर। मानसून के दौरान शिमला में तीन महीने तैनात रहेगी एनडीआरएफ की टीम और प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय, आज राज्य के चार जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
5: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
6: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
1: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
6: नियम और शर्तें लागू।
5: और अब एफएम शिमला पर ये वक्त है कुदरत के रंग प्रोग्राम का। हर बदलते मौसम के साथ कुदरत अपना रंगे मिजाज बदलती है और अपने आलीशान कुदरती नज़ारों से हम सबको अचंभित कर देती है। प्रकृति की इसी नक्काशी को निहारने और राहत के कुछ लम्हे गुजारने प्रकृति प्रेमी खींचे चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश की इन मनमोहक वादियों में।

प्रकृति का हर एक कोना अलग अलग रंगों से सजा हुआ है, जो ना केवल देखने में मनमोहक लगते हैं बल्कि हमारी लाइफ को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। कुदरत का हर एक रंग इस धरा को जीवंत और खूबसूरत बनाने वाला सबसे अद्भुत तत्व है। आसमान और समंदर का नीला रंग विशालता, गहराई और शांति का प्रतीक है। बसंत और वर्षा ऋतु के दौरान प्रकृति के निराले ही रंग देखने को मिलते हैं। हर जगह हरियाली, रंग बिरंगे फूलों के गलीचे, जिन्हें देखते ही दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है। दिल को जो खुशी मिलती है, जो सुकून मिलता है, उसके क्या ही कहने। और कुछ अद्भुत एहसासों को जिन्हें प्रकृति प्रेमी खींचे चले आते हैं पहाड़ों की ओर, जहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको कुछ ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जिन्हें देखकर आपका हैरान होना स्वाभाविक है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ सैलानी घूमना पसंद करते हैं, और यहाँ कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ श्रद्धालु साल के 12 महीने आते रहते हैं। तो आजकल के दिनों की अगर हम बात करें, तो मॉनसून सीजन भी हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुका है, और इस दौरान भी आप यहाँ घूमने आ सकते हैं, कुछ अच्छा वक्त, कुछ यादगार पल यहाँ बिता सकते हैं।

तेज़ रफ्तार ज़िंदगी को थोड़ा ठहराव देना चाहते हैं तो कुछ समय निकाल के आ जाइए घूमने हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में। बारिश के दौरान भी आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मॉनसून के दौरान प्रकृति के हरियाले नज़ारे, धुंध में लिपटी वादियाँ, संगीत सुनाते झरने नदियाँ, हवा में घुलती फलों और फूलों की सौंधी सौंधी खुशबू और कुछ अनोखे और रंगों के छींटे बिखेरते पंछी, कुदरत के इन वास्तविक रंगों को देखकर आपका दिल तो खुश हो ही जाएगा, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। एंड आई एम श्योर कि कुछ इस तरह से रेजुविनेट होने के बाद ना शहर के शोर में लौटने का मन नहीं करेगा आपका। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही, अपनी रूटीन की लाइफ से थोड़ी सी भी ब्रेक अगर मिल जाती है ना तो हम तरोताज़ा हो जाते हैं, है ना। बस ऐसा ही होता है प्रकृति का आकर्षण जो आपको कभी निराश नहीं होने देता।

ये मेलोडियस गाने आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम कुदरत के रंग। मॉनसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान पहाड़ों की यात्रा आपको मैजिकल और रोमांटिक एक्सपीरियंस देती है। इस मौसम में पहाड़ और बादल एक दूसरे में खो जाते हैं, यानी कभी कभी आप खुद को बादलों के बीच पाएंगे तो कभी आपको लगेगा कि बरसती बूंदों के साथ आपका मन भी भीगने लग गया है। इस बारिश पहाड़ों पर कुछ नई यादें बनाने आप ज़रूर आइएगा, लेकिन इन सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। मौसम की जानकारी लें, स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी की जानकारी रखें, लैंडस्लाइड्स वाले जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्रैवलिंग से बचें, और ख़ास तौर पर अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मानसून सीज़न में जो हमारे यहाँ के कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड्स का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी इंटीरियर एरियाज़ में, वहाँ पर आप ट्रैवलिंग से बचें। और जब भी घूमने का आप प्लान करें कहीं के भी लिए तो प्रॉपरली और सेफ्टी के साथ अपना जो है वो ट्रिप प्लान करें। और मौसम अपडेट के लिए सुनते रहें एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब कुदरत के रंग प्रोग्राम का ये आखिरी गाना प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: और इसी गाने के साथ कुदरत के रंग प्रोग्राम में आज बस इतना ही। एफएम शिमला पर वक्त हो चला है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं रीना वर्मा। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिश की गई। अब इस सिफारिश पर मुख्यमंत्री अंतिम फैसला लेंगे। तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर 2,930 रुपये में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना ने पर्यटन नगरी धर्मशाला को नया रंग रूप दे दिया है। बीते 5 सालों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धर्मशाला में जहां लोगों को मेट्रो शहरों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई है, वहीं धर्मशाला शहर विकास के मॉडल के रूप में उभरा है। शिमला जिले में मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपात परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की

0: एक टीम को शिमला में तैनात किया है। ये टीम जुलाई से सितंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए शिमला के डली में तैनात रहेगी। इस टीम में 30 सदस्य शामिल हैं। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। केशव चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने कहा है कि 1 महीने में 8 से 10 हज़ार भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। दक्षिण में पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। राजधानी शिमला की फल मंडी भट्टागुफर में इस वर्ष सेब सीजन की शुरुआत अच्छे दामों के साथ हुई है। मंडी में कल पहुंचे डार्क बैरन गाला किस्म के सेब को 210 से 250 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव मिला है जिससे बागवानों को इस बार बेहतर दामों की उम्मीद बढ़ी है। इस मंडी में रोजाना 400 से 500 पेटी सेब पहुँच रहे हैं। न्यूज़ हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला।

0: कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। शुक्रवार यानी 3 जुलाई को प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी, जिसका विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें कल प्रातः 8:45 से 9:15 के मध्य फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2808034 और 2808152। 0177 है शिमला का एसटीडी नंबर। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: और अब एफएम शिमला पर ये वक्त है कुछ सदाबहार गाने गुनगुनाने का।

और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे 60 से लेकर 90 के दशक के कुछ ऐसे एवरग्रीन सॉन्ग्स जो समय की सीमा लांघ गए और कहलाए सदाबहार गाने। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने। ओपी नैयर का संगीत है, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें।

हमराही फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, मुबारक बेबकम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और इसे कंपोज किया था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मेरे महबूब फिल्म के लिए ये गीत लिखा है शकील बदायूनी ने और इसे कंपोज किया है नौशाद ने।

0: कुछ देर।
1: साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज़ में। दिल ही तो है फिल्म के लिए ये गाना संगीतबद्ध किया था रोशन ने। अगला गाना आपको सुनवा रही हूँ आशा भोसले की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खान का लिखा ये गीत है जिसे संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम वो कौन थी।

एक्ट्रेस परवीन चौधरी और मनोज कुमार पर पिक्चराइज्ड ये एवरग्रीन सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया, वो कौन थी फिल्म से? और दोस्तों आपको पता है ये गाना यहाँ शिमला में ही शूट हुआ था, यानी यहाँ शिमला का जो बहुत ही फेमस आइस स्केटिंग रिंक है वहाँ पर इस गाने की शूटिंग हुई थी। एंड आई एम श्योर कि एक जो पीढ़ी एक ऐसी है ना जिन्होंने इन गानों को कभी बनते अपनी आंखों के सामने देखा है या इनकी शूटिंग देखी है या किसी ना किसी तरीके से इन गानों के साथ उनकी मेमोरीज जुड़ी हैं, तो इन पुराने गानों को जब भी सुनते हैं तो वो पुरानी यादें, मीठी यादें भी ताज़ा हो जाती है। ऐसा जादू है इन सदाबहार गीतों का। और ये गाने आप इन्जॉय कर रहे हैं FM शिमला पर अपनी रेडियो हम सफ़र स्वाति डोगरा के साथ।

0: गुलजार का लिखा ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज़ में, और आनंद फिल्म के लिए इस गाने को संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।
1: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
2: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: पर आपने ट्यून किया है FM शिमला और कुछ एवरग्रीन म्यूजिकल नंबर्स आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। और अब अगला गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में बुढ़ा मिल गया फिल्म से।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभिमान फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे कंपोज किया था एस टी बर्मन ने। अगला गाना आपको सुनवा रही हूँ यसुदास और आशा भोसले की आवाज़ों में, छोटी सी बात फिल्म के लिए। ये गीत लिखा है योगेश ने और इसे संगीतबद्ध किया है सलल चौधरी ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है FM शिमला और कुछ सदाबहार गाने आप इस प्रोग्राम में आज एंजॉय कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने 60 के दशक के कुछ सदाबहार गाने सुने, फिर 70 के दशक के और अब 80 के दशक के कुछ गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। और आज इस कार्यक्रम में 90s एरा तक के जो कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं वो आप सुनेंगे। बहरहाल अब ये अगला गाना कार्यक्रम का आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में लव स्टोरी फिल्म से आनंद बख्शी का लिखा ये सॉन्ग है जिसकी म्यूज़िक कंपोजिशन की है RT बर्मन ने।

मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में राम लखन फिल्म से अभी आपने ये गाना सुना। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ दिल से, फिल्म से हमने ये गीत चुना है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें हैं, गुलजार का लिखा यह गाना जिसे कंपोज किया है ए आर रहमान ने।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर। कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स आप एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। 60 से लेकर 90 के दशक के ये सदाबहार गाने हमने प्ले किए हैं आपके लिए और अब प्रोग्राम का ये आखिरी गाना प्ले कर रही हूँ SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में, दी जेंटलमैन फिल्म से।

और इसी मेलोडियस गाने के साथ आपका और हमारा ये म्यूज़िकल सफ़र भी आज यहीं पर ख़त्म होता है। अपने रेडियो दोस्त स्वाति डोगरा को दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। लेकिन आप सुनते रहें FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अभी प्रतीक्षा करें हमारी अगली उद्घोषणा की।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में मेरिट आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी की उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई बैठक में ये सिफारिश की गई। अब इस सिफारिश पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इन स्कूलों में तैनाती के लिए प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई चयन परीक्षा में 6,084 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि इन स्कूलों में लगभग 6,200 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। राज्य सरकार द्वारा खोले जा रहे इन सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण अभी तक लगभग 500 विद्यार्थी इन स्कूलों को छोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस के नेता वीबी जीराम जी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि वीबी जीराम जी योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार की पारदर्शिता, रोजगार के अधिकार, काम के भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों से भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे खत्म हो गए हैं और इसी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू परेशान है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मनरेगा में सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जबकि वीबी जीराम जी में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बाद तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कमी की है। तेल कंपनियों ने विमान ईंधन की दरों में भी 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। जानकारी के अनुसार अब 19 किलो वाला वाणिज्यिक सिलेंडर 2,930 रुपये में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बीते 4 महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता व कार्यकर्ता भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। केशव चौहान ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और पंचायत चुनाव के नतीजे इसका स्पष्ट प्रमाण है। यही कारण है कि अब बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के उन दावों को भी खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी ने कहा है कि 1 महीने में 8 से 10 हज़ार भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। केशव चौहान ने कहा कि भाजपा को छोड़ कांग्रेस अपनी चिंता करे, क्योंकि राज्य की जनता कांग्रेस के झूठ से तंग आ चुकी है।
1: मेरा कांग्रेस के महासचिव से आग्रह है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करे, हमारी पार्टी की चिंता छोड़ दे। अभी प्रदेश भर में पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय में उनकी हार हुई है, उसको छुपाने का, उसको दबाने के लिए ये इस प्रकार के प्रोपोगंडा कर रही है।
0: शिमला जिले में मॉनसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपदा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शिमला जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की एक टीम को शिमला में तैनात किया है। ये टीम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 3 महीने की अवधि के लिए शिमला के ढली में तैनात रहेगी। इस टीम में 30 सदस्य शामिल है। शिमला की अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने कहा है कि जिला प्रशासन मानसून के दौरान किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश में लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा हुई। इस दौरान मंडी जिला के ओट के पास पहाड़ से गिरी एक चट्टान की चपेट में आने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। प्रदेश में मानसून से जुड़ी

0: घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज चंबा जिले के पांगी और लाहौल घाटी में 2 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर मानसून की वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। उधर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जिले में ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ आने की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए लोगों को सचेत रहने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है। इधर लोक निर्माण विभाग ने मानसून को देखते हुए विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3:00 PM। नमस्कार।
1: ये थे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। FM शिमला सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलका ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। जी लेकर आ गए हैं वो कार्यक्रम जिसे सुनकर आप यादों के हंसी सफर में हिलौरे लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ आप वो गीत सुनते हैं जो सिर्फ गाने नहीं है बल्कि बीते हुए हसीन वक्त के वो पन्ने हैं जिन्होंने हमारी यादों को आज भी जिंदा रखा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आरडी बर्मन जैसे संगीतकारों ने जो धुनें बनाई हैं वो संगीत नहीं बल्कि जादू है। ये जादू हर उस दिल पर छा जाता है जो संगीत से मोहब्बत करता है। तो बस अगर आप भी ये मोहब्बत संगीत से करते हैं तो बने रहिए यूं ही FM शिमला के साथ और पुरानी फिल्मों से। जी ये कार्यक्रम है बस आपके लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर पुराना गाना एक अधूरी फिल्म है, आंखें बंद करो तो पूरा मंजर यादों के पर्दे पर दौड़ने लगता है। शतरंज फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। आप सुन रहे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से

0: बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पुरानी फिल्मों से, जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। और जो गाने आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ गाने नहीं हैं, ये हम सब की जिंदगी के वो पन्ने हैं जिन्हें हम अक्सर बंद कर देते हैं। और चलिए आज फिर पलटते हैं यादों की वो किताब और सुनते हैं एक ऐसा तराना जो सीधे आपके दिल के तार छुएगा।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पुरानी फिल्मों से। जी हाँ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ। पैसा या प्यार इस फिल्म का गीत आपके लिए प्ले कर रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

इस वक्त आप हैं एफएम शिमला के साथ। जी एफएम शिमला पर वक्त आपके लिए लेकर आ गया है पहाड़ी संगीत। जी वो पहाड़ी संगीत जो रूह को सुकून देता है। देखिए पहाड़ी संगीत में एक ऐसी जादुई कशिश है जो देवभूमि की खुशबू को समेटे हुए है। चाहे आप पहाड़ों में पैदा हुए हों या वहां सिर्फ घूमने आए हों, एक बार ये संगीत सुन ले तो इसके मुरीद होना तो पक्का है। तो बस अभी इसी वक्त भी कुछ ऐसा ही हम आपके लिए करने वाले। जी आपको सुनवा रहे हैं ये पहाड़ी भजन पहाड़ी संगीत में।

देखिए, हमारे पहाड़ों का तो हर कोना सुरों से सजा है। यहाँ जब खेतों में काम करते हुए कोई गीत गूंजता है या ऊंचे शिखरों पर भेड़ बकरियां चराते हुए कोई अपनी बांसुरी की तार छेड़ता है तो लगता है जैसे खुद कुदरत मुस्कुरा रही हो। पहाड़ी संगीत में लीजिए पेश है पहाड़ी सहगान आवाजें आशा कंवर, निशा बाला, किरण भारद्वाज और साथियों की।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पहाड़ी संगीत का साथ एफएम शिमला के। प्रकाश चंद शर्मा जी हाँ, इनकी आवाज में ये लोकगीत आपके लिए प्ले कर रहे हैं।

मौसम ने ली है अंगड़ाई और हवाओं में एक मीठी सी खनक छाई, और आपके लिए पहाड़ी संगीत में हम अगला लोकगीत लेकर आए हैं शारदा शर्मा और तारावती की आवाज़ में।

राजेंद्र ठाकुर के गाए इस लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत में बस इतना ही। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 12 बजने को है। समाचारों के लिए आइए आपको ले चले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।

इस वक्त आप सुन रहे FM शिमला 103.7 MHz पर 12:20 होने को है। प्रतीक्षा कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की।

मीडियम वेव और FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है महिला सम्मेलन।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सफर में मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सखी जया ठाकुर
1: और मैं मीनाक्षी वर्मा।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: जया, हमारे बुजुर्ग यानी हमारे घर के वृद्ध लोग हमारी धरोहर हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने खुद के जीवन को महत्व ना देकर हमारे जीवन में उजाला किया है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे बुजुर्ग अकेलेपन और असुरक्षा से जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी समस्याओं को पहचान कर उनका हल ढूंढने की कोशिश करें।
1: जी बिल्कुल, आजकल ज़्यादातर बुजुर्ग माता पिता घर में अकेले रहते हैं, बच्चे नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहते हैं, जिस वजह से वो रोज़ घर नहीं आ पाते।
0: जी,
1: और इस कारण से घर में बुज़ुर्ग अकेले रह जाते हैं और उन्हें कई तरह की समस्याएं आती है और उन्हें उनसे खुद ही निपटने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और कई बार वो निपट भी पाते हैं और कई बार उसे नहीं सुलझा पाते।
0: जी, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिससे कि उन्हें समस्या के समय जो है वो मदद मिल सके, जैसे एम्बुलेंस, डॉक्टर या करीबी पुलिस थाना आदि जैसी ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर कागज पर लिखकर दरवाजे के पास चिपका दें, साथ ही मोबाइल में भी सेव कर लें।
1: जी, और साथ ही आपको क्या करना है कि आस पड़ोस के कुछ विश्वसनीय लोगों के नंबर और अपने जो उनके खुद के बच्चे हैं आप लोग, उनके नंबर भी आप सूची में लिख लें, साथ ही उनके फ़ोन में सेव कर दें, हो सके तो स्पीड डायल पे सेव कर दें ताकि वो आसानी से आपको कॉल कर सकें जब भी उन्हें ज़रूरत हो।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही घर को सुरक्षित कर लें, जिसके लिए आप दरवाजे पर डोर आई लगवाएं, जिससे आप दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति को अंदर से ही देख पाएं। लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ लोहे का गेट भी लगवाएं, खिड़कियों पर भी ग्रिल लगवाएं।
1: जी, और आपको इसके अलावा क्या करना है कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को समझाना है कि अनजान व्यक्तियों को घर के अंदर ना आने दें। जैसे अभी जया आपने बताया कि अगर बहुत ज़रूरत हो तो गेट के अंदर से ही आप उनसे बात कर सकते हैं ताकि कोई भी समस्या उन्हें ना आए।
0: जी, अगर आस पड़ोस के लोगों से रोज़ बातचीत होती है और उनका आपके घर आना जाना है तो उसके बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए, साथ ही अपनी दिनचर्या के बारे में किसी को ना बताएं।
1: जी, साथ ही बुज़ुर्गों को ये भी बताएं कि अगर कभी नल खराब हो जाता है या बिजली के संबंधित कोई समस्या हो जाती है तो उसे ठीक करवा रहे हैं अगर आप, तो अपने साथ किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ रखें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने बच्चों को उस समय पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि घर पे कौन है, कौन आया है या क्या हो रहा है, ताकि वो जान सके कि उस समय घर पर कौन है।
0: जी बिल्कुल, और साथ ही तकनीकी की मदद लेकर घर के बाहर एक कैमरा जरूर लगाएं ताकि आसपास होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।
1: जी, आप चाहें तो घर में स्मोक डिटेक्टर भी लगवा सकते हैं ताकि कुछ भी अनहोनी ना हो। साथ ही साथ घर के कुछ हिस्सों पर आप मोशन सेंसर लाइट्स लगवा सकते हैं, जैसे कि रात में अगर बुज़ुर्ग उठते हैं तो उनके चलने पर ही वो सेंसर लाइट्स अपने आप जल जाएंगी, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आए।

0: जी, तो बहनों इस तरह की छोटी छोटी सावधानियों से हम घर पर रह रहे बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: जी, और जया हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगी और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगी, ताकि जो उनके घर के बुज़ुर्ग हैं या जो भी घर का सदस्य अकेला घर में रह रहा है वो सही तरीके से सुरक्षित रह सके।
0: जी,

0: देखो बहनों, आज हम बात करेंगे उस रिश्ते की जो हमने भुला दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रकृति से, अपने रिश्ते की। कभी धरती माँ की गोद में खेलते थे हम, अब उसी गोद को कचरे से भर दिया है। कभी हवा शीतल होती थी, अब जहरीली हो चली है। क्या यही विकास है?
1: जी बिल्कुल जया, विकास जरूरी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन किस कीमत पर? पेड़ों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें, नदियों की जगह कचरा और चमकते सूरज की जगह धुएं का कोहरा चारों तरफ फैला है।
0: जी
1: कभी जो हरी भरी धरती माँ थी, वो आज खामोश खड़ी है। तो बहनों, हमें अब जाग जाना चाहिए और हर वर्ष मनाए जाने वाले वन महोत्सव का हिस्सा बनकर प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।
0: जी बहनों, हर वर्ष 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, जो कि एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इसका उद्देश्य नागरिकों में पेड़ों के प्रति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण की भावना जगाना है। साथ ही लोगों, छात्रों को वनों के कटाव के नुकसान और अधिक पेड़ लगाने के फायदे के बारे में जागरूक करता है।
1: जी बिल्कुल, खासकर जो आज के छात्र हैं, नए बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन आ रही है जिसे हम कहते हैं, उन्हें ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से पेड़ हमें फ़ायदा देते हैं, ताकि वो जागरूक हो, नए पेड़ लगाएं, उन्हें बचाने की कोशिश करें।
0: जी
1: और हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कम करने में बहुत मदद मिलती है।
0: जी बिल्कुल, वन महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है।
1: जी
0: यदि प्रत्येक व्यक्ति हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा योगदान दिया जा सकता है।
1: जी और बहनों, अगर आप चाहें तो आप अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा सकते
0: जी
1: हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर के हर एक सदस्य को अपने जन्मदिवस पर एक पेड़ तो जरूर लगाना ही चाहिए।
0: जी बहनों, वन महोत्सव का अर्थ है वनों का महान उत्सव।
1: जी
0: मानसून के समय पेड़ लगाने से पौधे जल्दी बढ़ते हैं और उन्हें पर्याप्त पानी मिलता है। यही कारण है कि इसे जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून की शुरुआत के साथ मनाया जाता है।
1: जी आप छोटे छोटे योगदान कर सकती हैं, जिससे आप पर्यावरण को बचा सकती हैं। आपको क्या करना है कि अपने घर के आसपास आप पौधे पेड़ लगा सकती हैं, यहाँ तक कि बच्चों को जब भी स्कूल वो जाते हैं, वहाँ पे लगाने के लिए आप पौधे दे सकती हैं, पेड़ दे सकती हैं, जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित बना के रखे।
0: जी, इस दौरान पूरे देश में लोग स्कूल, सरकारी दफ्तर और संस्थाएं एक साथ मिलकर पौधे लगाते हैं, और हम सभी को भी यही संकल्प लेना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे।
1: जी, एक पेड़ अनेक जीवन का संदेश अपनाकर हम अपने देश को हरा भरा और स्वच्छ बना सकते हैं।
0: जी
1: और हो सके तो आपको हर वक्त ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप किसी पेड़ को ना काटें, और किसी कारणवश अगर आपको काटना ही पड़ जाता है, तो आप एक के बदले अनेक पेड़ लगाकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी

0: तो बहनों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब खाना खजाना में हम आपको बताएंगे आज एक रेसिपी। और आज की जो रेसिपी है वो है ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी।
1: जी, पिज़्ज़ा पसंद करने वाले हर पार्टी में पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन रोज़ाना पिज़्ज़ा ऑर्डर करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अगर आपको शॉर्टकट स्टाइल में ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना हो तो आप आसानी से घर पर पिज़्ज़ा बना सकते हैं।
0: जी, और सबसे अच्छी बात ये है कि जल्दी

0: बनकर भी तैयार होता है और जब भी आपका मन चाहे तो आप ब्रेड की हेल्प से इसे बना सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप इसे हेल्दी बनाना चाहे उतना इसे बना सकते हैं, अपनी मर्जी की जो भी आपका मन करे वो सब्जियाँ डाल सकते हैं।
1: जी
0: तो बहनों को अब बता देते हैं कि प्रिजर्व ब्रेड जो बनाना है उसके लिए क्या-क्या सामग्री की आवश्यकता है।
1: जी सबसे पहले हमें वाइट ब्रेड जो है, या आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो, 4 स्लाइस या 6 लेने हैं। मोजेला चीज़ लेनी है आपको 100 ग्राम, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, पिज़्ज़ा सॉस 4 से 5 टेबल स्पून, स्वीट कॉर्न 2 टेबल स्पून उबला हुआ, काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक भी आप जो है वो ले सकते हैं, मक्खन या बटर 1 या 2 टेबल स्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स और 1/2 ही टीस्पून जो है वो ऑर्गेनो 1/2 टीस्पून। बहनों अब हम विधि जान लेते हैं कि हमें किस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाना है, लेकिन एक बार फिर से मीनाक्षी आप जो है वो ब्रेड को हमें क्या-क्या चाहिए उसके लिए वो ज़रूर बता दें।
0: जी तो बहनों एक बार फिर से आप नोट कर लें सामग्री। आपको सबसे पहले चाहिए वाइट या ब्राउन ब्रेड, उसके 4 या 6 स्लाइस, मोजरेला चीज़ लगभग 100 ग्राम, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर भी बारीक कटा हुआ, या जो और कोई आप सब्जी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकती हैं, पिज़्ज़ा सॉस 4 से 5 टेबल स्पून, स्वीट कॉर्न 2 टेबल स्पून लेकिन वो उबला हुआ होना चाहिए, काली मिर्च पाउडर स्वादानुसार, नमक भी आप स्वादानुसार लें, मक्खन या बटर 1-2 टेबल स्पून लें, मिक्स्ड हर्ब्स 1/2 टेबल स्पून आप ले सकती हैं, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून और ऑर्गेनो 1/2 टेबल स्पून। तो ये सारी सामग्री आपको चाहिए होगी। अब बता देते हैं हम आपको इसकी रेसिपी।
1: जी कि किस तरह से हमें इसे बनाना है। ओवन को 15 से 20 मिनट पहले 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए रख दें। एक बाउल में जो है वो टमाटर, जौल, पैन, प्याज, शिमला मिर्च मिक्स करें। अब इसमें चिल्ली फ्लेक्स, मिक्स्ड हर्ब्स, ऑर्गेनो और नमक मिलाकर मिक्स करें।
0: जी पिज़्ज़ा चटनी बनाने के लिए टमाटो केचप, शेजवान चटनी और चिली फ्लेक्स को एक बाउल में मिक्स कर लें। अब ब्रेड के एक साइज इस सॉस पर फैला दें, यानी कि एक स्लाइस आप ले लें, उस पर अच्छे तरीके से इसे फैला लें, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल वाला मिक्सचर फैलाएं और उसके ऊपर चीज़ को कद्दूकस करके फैलाएं।
1: जी अब ब्रेड स्लाइस को बेकिंग ट्रे में रख कर ओवन में रख दें। 15 मिनट बाद ओवन से निकाल लें। ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा ऑर्गेनो डालकर गर्मा गर्म जो है वो आप पिज़्ज़ा सर्व कर सकते हैं।
0: जी और अगर आप चाहें तो ब्रेड को आप पूरा पीस ना रख के कट करके उसकी अलग शेप बना के भी आप उसे बना सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगता हो।
1: जी
0: तो ये तो बात हुई पिज़्ज़ा यानी कि नमकीन व्यंजन की, तो क्यों ना अब हम कुछ मीठे व्यंजन की बात भी कर लें जया अपनी बहनों से।
1: जी बिल्कुल। तो मीठा खाना तो सभी को पसंद होता है, और खाने के बाद मीठा ना हो खाना अधूरा सा लगता है मीनाक्षी। तो
0: जी
1: आज हम अपनी बहनों को मावा गुड़ मोदक की रेसिपी बता देते हैं।
0: जी बहनों इसकी रेसिपी आप नोट कर लें, और सबसे पहले आप सामग्री नोट कर लें। आटा आपको 2 कटोरी चाहिए होगा, घी या तेल तलने के लिए और थोड़ा सा मोयन के लिए भी, जो भरने के लिए आपको चाहिए क्योंकि मोदक बना रहे हैं अंदर आप जो स्टफिंग भरेंगे उसके लिए, गुड़ 1 कटोरी कसा हुआ, नारियल 2 चम्मच वो भी किसा हुआ होना चाहिए, सूखे मेवे 2 चम्मच जो कि थोड़े बारीक कटे हों या आप उन्हें तोड़ ले, इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, भुना हुआ आटा 4 छोटे चम्मच।
1: जी और बनाने की विधि भी बता देते हैं मीनाक्षी।
0: जी
1: आटे में मोयन डालकर अच्छी तरह से मिला लें और पानी की सहायता से सख्त गूंद लें। आपका ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए आटा। अब किसा हुआ गुड़, नारियल, सूखे मेवे की कतरन, भुना हुआ आटा, इलायची पाउडर को

0: मिलाकर तैयार कर लें। अब गूंधे हुए आटे की छोटी छोटी सी लोई जो है वो बनाकर थोड़ा सा बेले, उसमें भरावन सामग्री भरकर मोदक का आकार देकर बंद करें।
1: जी, और आप कोई भी आकार दे सकती हैं जो आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कढ़ाई में तेल या घी गरम करके मोदक को तलना है। सर्व करते समय उसके ऊपर कुछ सूखा हुआ जो नारियल है आप उसे डाल सकते हैं। तो जब आप उसे सर्व करेंगे तो वो टेस्ट के साथ साथ देखने में भी बहुत आकर्षक लगेगा।
0: जी
1: तो बहनों, इस तरीके से अब हमने आपको बता दी है आज मावा गुड़ मोदक की रेसिपी और ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगी और घर के सभी लोगों को टेस्ट करवाएंगी।
0: जी बिल्कुल।

0: मौसम में बदलाव प्रकृति की देन है, लेकिन ये बदलाव कई लोग सहन नहीं कर पाते और बीमार पड़ जाते हैं। बहनों, हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के बाद एकदम से बारिश का मौसम शुरू हो गया है, यानी कि थोड़ी थोड़ी बरसात आना शुरू हो गई है। तो ऐसे में बहुत से लोग इसे सह नहीं पाते और बीमार पड़ जाते हैं। कुछ रोज़ पहले ही हम सभी भीषण गर्मी से जूझ रहे थे और अब मॉनसून के आगमन आते ही थोड़ी थोड़ी ठंडक होना शुरू हो गई है, जिससे कभी गर्मी लगती है तो कभी उमस का सामना करना पड़ता है।
1: जी, इसका हमारी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर। वहीं लापरवाही बरतना मुख्य रूप से हर मौसम में सर्दी, खांसी, जुखाम, पेट दर्द और स्किन एलर्जी का कारण बनता है। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए आपको पहले से ही तैयार होना होगा, ताकि आप मौसम का भरपूर जो है वो आनंद उठा सके।
0: जी, बदलते मौसम का सबसे ज़्यादा असर बच्चों और बुज़ुर्गों पर पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि उनका खास ख्याल रखा जाए। इस मौसम में आप कपड़ों को पहनने से पहले इस्त्री ज़रूर करें। ऐसा करने से कपड़ों पर लगे जो कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ज़्यादा ठंडे खाद्य पदार्थों के सेवन से भी आपको बचना चाहिए।
1: जी, बाहर का खाना खाने से परहेज करें, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें, जिससे बॉडी हाइड्रेट रहे और इम्यूनिटी जो आपका है वो मजबूत बनाने पर भी ध्यान दें। बरसात के मौसम में आप भोजन में हेल्दी तुलसी और अदरक का उपयोग करें, ये एंटीबायोटिक का कार्य करते हैं और इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखते हैं।
0: जी, और साथ ही बाहर जाते समय मास्क आप अवश्य लगाएं और दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी या नमक डालकर आप कुरला कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो ओरल हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहती है, जिससे संक्रमण होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है।
1: जी, और इसके साथ ही बहनों, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें। मौसम चाहे कोई भी हो, साफ़ सफाई हमेशा ज़रूरी होती है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर बीमारियों की जड़ गंदगी ही होती है, क्योंकि इस समय चोरों और मतलब जो है वो चारों ओर गंदगी और कीचड़ फैला रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें।
0: जी, साथ ही साथ बहनों, पौष्टिक आहार का भी आप ख्याल रखें। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अच्छी डाइट अपनाएं। बासी खाना ना खाएं, तला भुना खाने से भी परहेज करें। दिन में 2 ताज़े फल आप ज़रूर खाएं, साथ ही हरी सब्जियां और दालों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। खुद को हाइड्रेट भी रखें। ये ना सोचें कि अब गर्मी जा चुकी है, हो सके तो दिन में 1 बार दूध में हल्दी डालकर पिएं। इससे आपकी जो इम्यून पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बीमारियों से आप दूर रह सकती हैं।
1: जी, तो क्यों ना मीनाक्षी, एक और गीत सुन लिया जाए और बहनों को भी सुनाया जाए।
0: जी बिल्कुल।

महिला सम्मेलन आपने सुना। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, 1 बजने को है हिंदी व अंग्रेजी समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding

अरे जनाब, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए और जरा अपने रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी खिड़की पर दस्तक दे रहा है एक ऐसा पोस्टमैन जो चिट्ठियां नहीं बल्कि आपकी पसंद के सुपरहिट गाने लेकर आ रहा है। जी नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम म्यूजिक मेल लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो हम सफर अलका ठाकुर। जी आपकी ढेर सारी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया है और अगले 50 मिनट तक नॉनस्टॉप चलेगा आपकी फरमाइशों का सिलसिला। तो बस हमारे नए श्रोता जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, नोट करें हमारा ईमेल एड्रेस airfmshimlamusicmail@gmail.com।

0: सही। यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लफ्ज़ कम पड़ जाएं पर जज्बात कम नहीं होते, और जब बात आपकी फरमाइश की हो तो सुर कभी मध्यम नहीं होते। आप सभी का स्वागत है म्यूज़िक मेल में। आज फिर हमारे पास आपके ईमेल्स का एक लंबा कारवां है और हर ईमेल में कुछ खास छिपा है, तो बिना देर किए चलिए खोलते हैं आज की कड़ियों का खूबसूरत पिटारा। रुख करते हैं आज के कार्यक्रम की पहली मेल की तरफ जो हमें भेज रहे हैं वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और कोई सा भी गीत कार्यक्रम में ये सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही अगली मेल हमें आई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और बहुत सारा मैसेज इन्होंने लिख के भेजा है, खुश रहो और खुशियां बांटो। तो आप भी हमेशा खुश रहें। और इसके साथ ही अगला मेल हमें आया है गाँव वो डाघर निम्नाबाद ज़िला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, गांव टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी मेल कर रहे हैं और कार्यक्रम में कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कमिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार हमें ईमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा ईमेल ज़रूर शामिल कीजिए। तो आपका ईमेल हमने शामिल किया है और सुनवा रहे हैं आप सभी को ये गीत।

ईमेल बेस्ड प्रोग्राम म्यूजिक मेल आप सुन रहे हैं एफएम शिमला के साथ। और अगर आप भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं अपनी फरमाइश के साथ तो हमें ईमेल करें AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com पर और शामिल हो जाइए अपनी फरमाइश के साथ म्यूजिक मेल कार्यक्रम में। अगली ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो लिखने वाले हैं पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सानी, मोहम्मद अफजल मलिक हमें मेल कर रहे हैं और कार्यक्रम में साथ ही शामिल हो रहे हैं। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, इनके साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। नूर महल मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, जो कि एक शिक्षिका हैं ये लिख रही हैं। तलत जहानाज

म्यूजिक मेल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और इनके साथ है बेबी आराध्या साहू। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल और इनके साथ है कोका बेलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य और सुनना चाहते हैं परवरिश फिल्म का कोई सा भी गीत। गांव शुभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें ईमेल कर रहे हैं और कार्यक्रम में कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। नमस्कार लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन और कह रहे हैं किसी भी गीत में इनका नाम शामिल करें। तो आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं परवरिश फिल्म का ये गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: म्यूजिक मेल कार्यक्रम आप सुन रहे FM शिमला के साथ। और अगला ईमेल हमें आया है जनकपुरी सहारनपुर से, भेजने वाले हैं जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, और कह रहे हैं कि वी ऑल्सो लिसनिंग योर प्रोग्राम विद फैमिली, सो प्लीज सी माई मेल बॉक्स। तो हमने आपका मेल बॉक्स देखा भी है और आपके नाम भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। इसके बाद अनिल इंदु शर्मा, ऋचा दर्पण शर्मा, लव नेंसी शर्मा, गुड्डू महादेव शर्मा सुनाम पंजाब से हमें मेल कर रहे हैं, कोई सा भी गीत ये कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं।

शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अपने ईमेल के ज़रिए। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।

रतन माला और आरती कुमारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसके साथ ही धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू और सुनना चाहते हैं राम लखन फिल्म का गीत। तो आप सभी के लिए अब हम प्ले कर रहे हैं राम लखन फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत, सुनते रहिए।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

आपके ईमेल्स का सिलसिला लगातार जारी है और अगली ईमेल हमें कार्यक्रम में मिली है चिरमिरी कुरिसिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव सिंह ऋषभ सिंह राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद लहरे कालिंदरी लहरे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और नियमित आहूजा ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोलानी विश्वकर्मा सोना विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा पलेरा टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश से ये हमें ईमेल कर रहे हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। अगला ईमेल हमें आया है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। लिखने वाले हैं मोहम्मद इसहाक और खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक और आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ और निलोफर फातिमा छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान और इशरत परवीन मोहम्मद हसनैन रजा और गोसिया फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य भी कार्यक्रम में सुनते हैं और ये सुनना चाहते हैं कोई सा भी गीत कार्यक्रम में अनामिका फिल्म से। तो आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं अनामिका फिल्म का ये गीत। बने रहिए एफएम शिमला के साथ।

0: 叔叔，叔叔，叔叔，
1: 叔叔。

तो लिसनर्स, आपकी मेल का ये सिलसिला यहीं थमता है। उम्मीद है आपके दिल की बात आपके अपनों तक ज़रूर पहुंची होगी और आपकी फरमाइश भी। म्यूजिक मेल कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए आपका अपना FM शिमला।

इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ों की धड़कन, यानी आपका अपना एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर आप

अब के लिए लेकर आ गए हैं वो कार्यक्रम, नाम है जिसका सबरंग। और सबरंग कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस सूफी कलाम के साथ, आवाज कैलाश खेर की।

इस वक्त आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 प्रातः 8:45 से आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। सबरंग कार्यक्रम में अगली आवाज फाल्गुनी पाठक की।

सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। 2:15 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला।

0: जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच

0: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालटाल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से

0: गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 की बार पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार। पहाड़ों की ठंडी वादियों, ऊंचे ऊंचे देवदारों के साए और कलकल बहते झरनों की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आसमान को छूते इन शिखरों से वादियों को महकाती इस ठंडी हवा के साथ मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर और आप सुन रहे हैं आपका अपना FM शिमला। लेकर आ गए हैं कार्यक्रम, नाम है जिसका शिखरों के स्वर।

कहते हैं ना कि इन पहाड़ों की बात ही कुछ अलग होती है। यहाँ की हवाओं में एक खनक है, यहाँ के रास्तों में एक कहानी और यहाँ के गानों में हमारी सदियों पुरानी संस्कृति की रूह बसती है। आज के सफ़र में हम और आप मिलकर देवभूमि के उन अनछुए मोड़ों पर चलेंगे जहाँ से गूंजेंगे पहाड़ी लोकगीतों के वो खूबसूरत तराने जो सीधे आपके दिल में उतर जाएंगे। तो मैना देवी की आवाज़ में ये लोकगीत आपके लिए।

शिखरों से गूंजती हैं ये आवाज़ें जो गवाह हैं कि हमारी संस्कृति आज भी कितनी जवां है। ये सिर्फ सुरताल नहीं है, ये हमारे पहाड़ों की धड़कन और वफा है। शिखरों के स्वर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला के साथ, और अगली आवाज़ सुरेश वर्मा की।

0: हेमचंद हनोट के गाए इसी लोकगीत के साथ है कार्यक्रम शिखरों के स्वर को यहीं समेटते हैं। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला, DTH और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत और जापान ने आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा AI सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इसके साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
3: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता

0: और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सीबीएसई अध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है और अब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा।
2: मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो, उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर ये सारी बातें हो तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी इसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहां तक हमारे शिक्षा की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां शीघ्र हो।
1: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए इस वर्ष 95,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य सरकारें भी अपना हिस्सा देंगी जिससे कुल व्यय 1,51,282 करोड़ रुपए हो जाएगा।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आज जिला सोलन विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक सोलन में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी योजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्ण व समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। सुरेश कश्यप ने सोलन जिला में केंद्रीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर संतोष जताया और सभी खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आज से वीबीजी रामजी योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत हिमाचल में कार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: ये थे प्रादेशिक समाचार। आइए अब सुने मंडी जिला की चिट्ठी। लेखक हैं मुनीश सूद और वाचिका हैं राजकुमारी चंदेल।
5: मंडी जिला के जोगिंद्रनगर स्थित ओहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना अब पूरी क्षमता से संचालित हो रही है और हिमाचल प्रदेश के लिए आय का बड़ा स्रोत बन गई है। परियोजना से प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। अब तक परियोजना से लगभग 465 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो चुका है। इसका वार्षिक लक्ष्य 390 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का है। राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हस्तक्षेप से परियोजना की वित्तीय और प्रशासनिक बाधाएं दूर हुई तथा 185 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से बहाली और मरम्मत कार्य पूरे किए गए। परियोजना की आय का 13% हिस्सा राज्य सरकार को मिलेगा जिससे हर वर्ष 25 से

0: 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। परियोजना प्रबंधन के अनुसार अब उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और इससे प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी। परियोजना के प्रबंध निदेशक देवेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष शानन जल विद्युत परियोजना के लगभग 1 माह बंद रहने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन अब उत्पादन सामान्य गति से बढ़ रहा है। उहल चरण 3 परियोजना को प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, राजस्व वृद्धि और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। बीते दिनों नगर निगम मंडी को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया है। लगातार 5वीं बार पार्षद चुनी गई सुमन ठाकुर को मेयर, जबकि जितेंद्र शर्मा को डिप्टी मेयर निर्वाचित किया गया। मेयर बनने के बाद सुमन ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व और नगर निगम क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शहर के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण व जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर जितेंद्र शर्मा ने कहा कि नगर निगम के सभी पार्षदों को साथ लेकर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाएगा। मंडी जिला में रेशम उद्योग ग्रामीण आजीविका का मजबूत आधार बनकर उभरा है। सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की भागीदारी से हजारों परिवारों की आय में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में जिले के 1944 किसान परिवार रेशम उत्पादन से जुड़े हैं। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान जिले में 6593 किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए, जबकि 27041 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ। इस अवधि में किसानों को 84,500 उन्नत किस्म के शहतूत पौधे भी वितरित किए गए। सिल्क समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में जिले के 105 रेशम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और विपणन सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिले के मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक टसर रेशम पालन भी ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन रहा है। रेशम गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए मंडी जिले में रेशम मंडल मंडी, बालीचौकी, संधोल और थुनाग स्थित सिल्क वर्म सीड प्रोडक्शन सेंटर सहित कई संस्थान सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से किसानों को रेशम बीज, पौधरोपण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और मूल्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जिससे जिले में रेशम उद्योग को संगठित रूप से बढ़ावा मिल रहा है। गत दिनों जंजहली में जिला उद्योग केंद्र मंडी के सौजन्य से स्थानीय उद्यमियों के लिए जैम पोर्टल, रैंप योजना, उद्यमिता प्रशिक्षण और इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े करीब 60 उद्यमियों ने भाग लिया। इस दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। गत दिनों जोनल अस्पताल मंडी की रोगी कल्याण समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में अस्पताल की OPD पर्ची का शुल्क 10 रुपये निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बढ़ती मरीज संख्या, रखरखाव और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कदम समय की जरूरत बन गया था। इसी के साथ मंडी जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे मंडी जिला की चिट्ठी, लेखक थे मुनेश सूद। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

इस वक्त आप हमारे साथ और सुन रहे हैं पहाड़ों की धड़कन FM शिमला 103.7 MHz पर। जो वक्त बदलता है लोग बदलते हैं, पर जो कभी नहीं बदलता वो है गुजरे जमाने के वो गीत। कभी यादों की धूप तो कभी जज्बात की बारिश लेकर आते हैं ये नगमे। तो बिल्कुल आपके लिए ऐसे ही सुरीले नगमे लेकर आ गए हैं हम FM शिमला पर ओल्ड हिट्स में। तो शुरुआत में आपके लिए प्ले कर

रहे हैं ये गीत जिसे हमने लिया है कन्हैया फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सुनते रहिए।

सजती है जब महफिल पुराने तरानों की, तो खिल उठती हैं यादें कई जमानों की। दिल देके देखो इस फिल्म का गीत, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, मजरूह के बोल, उषा खन्ना का संगीत।

आज के दौर की भागदौड़ में पुराने गाने किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह रूह को सुकून देते हैं। और पुराने जमानों की सबसे बड़ी खूबी है कि वे कान से नहीं सीधे दिल से सुने जाते हैं। दिल तेरा दीवाना।

मन संवर कर तू जिस दम चले, ओ देखने वाला दिल को मले।

भाई बहन फिल्म के इसी गीत के साथ यही समेट रहे हैं ओल्ड हिट्स को। इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम शिमला पर अब पेश है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट, आपकी दोस्त सोनिका कौशल। दोस्तों, जुलाई का महीना दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही मौसम ने अपना सबसे खूबसूरत रूप ओढ़ लिया है। आसमान में घिरते काले बादल, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और खिड़कियों पर दस्तक देती बारिश की बूंदें, ऐसा लगता है मानो प्रकृति कोई अनकहा संदेश सुनाना चाहती हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बारिश की हर बूंद अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि अनगिनत कहानियां भी लेकर आती है। कहीं कोई दोस्त के साथ बारिश में भीग रहा है, कहीं कोई

पहाड़ों की वादियों में मानसून का आनंद ले रहा है, कहीं कोई गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ इस मौसम का लुत्फ उठा रहा है, और शायद आप ये सब स्टोरीज अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तभी मन के किसी कोने से एक धीमी सी आवाज़ उठती है, क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? यही सवाल जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन आज लाखों युवाओं के मन में चुपचाप बरसता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या हर बारिश में भीगना ही ज़रूरी है, या कभी कभी खिड़की के पास बैठकर बारिश की रिमझिम सुनना और इस पल को दिल से महसूस करना ज़रूरी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस सुहानी मानसून में ये राज खोलते हैं कि हमारी खुशियों की असली चाबी आखिर है किसके पास, फोमो के बेचैन कर देने वाले डर के पास या जोमो के सुकून भरे एहसास के पास। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज युववाणी के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे फोमो वर्सेस जोमो की। बातों के साथ साथ आपके एंटरटेनमेंट का रखेंगे पूरा ध्यान। तो चलिए बिना देर किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस शानदार गीत के साथ।

दोस्तों आज कार्यक्रम युववाणी में हम बात कर रहे हैं फोमो वर्सेस जोमो की। सबसे पहले बात करते हैं फोमो की। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, आज की जेंजी और युवाओं के बीच बेहद प्रचलित या यूं कहूँ ट्रेंडिंग वर्ड है। साधारण भाषा में कहूँ तो फोमो का अर्थ है कुछ छूट जाने का डर। ये वो साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जिसमें हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे ज़्यादा खुश हैं, सक्सेसफुल हैं या थ्रिलिंग लाइफ जी रहे हैं और हम इस एक्सपीरियंस से कहीं पीछे रह गए हैं। सोशल मीडिया ने इस इमोशन को और भी बढ़ा लिया है क्योंकि वहाँ हमें लोगों की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल दिखाई देते हैं। पूरी कहानी नहीं, लेकिन अनजाने में हम उन्हीं तस्वीरों और वीडियो से अपनी लाइफ का कंपैरिजन करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने सोशल मीडिया खोला हो और देखा कि आपके दोस्त किसी ट्रिप या कॉन्सर्ट में हैं और अचानक आपके मन में ख्याल आया, काश मैं भी वहाँ होता, तो इसी इमोशन का नाम है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यकीन मानिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। आज के डिजिटल दौर में लगभग हर युवा इस इमोशन से गुजरता है। दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन अभी आपकी फोमो को थोड़ा सा दूर भगाते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट की। दोस्तों, फोमो होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लगातार सोशल मीडिया पर बने रहना, दूसरों से कंपैरिजन करना, हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की चाह रखना, खुद पर कम विश्वास और ये डर कि कहीं हम किसी अवसर से पीछे ना रह जाए, हमसे कोई ट्रेंड मिस ना हो जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फोमो के कुछ सिम्टम्स भी हैं, जैसे बार बार मोबाइल फ़ोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर इंस्टेंट रिएक्शन देना, ऑफलाइन रहने पर बेचैनी महसूस करना, दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर दुखी होना, काम में ध्यान न लगना और नींद प्रभावित होना, ये सभी फोमो के कुछ सिम्टम्स हैं। साथियों, धीरे धीरे हमारी ये आदत स्ट्रेस, टेंशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी और मानसिक थकान का कारण बन सकती है। दोस्तों, बातों का ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा सुरों की दुनिया में चलते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, हम बात कर रहे थे फोमो की। अब बात करते हैं फोमो के बिल्कुल विपरीत सोच की, जिसका नाम है जोमो, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों, जोमो का मतलब है हर जगह मौजूद रहने, हर ट्रेंड को पकड़ने या हर पल सोशल मीडिया पर अपडेट रहने की चिंता छोड़कर अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना। साथियों, मान लीजिए आपके दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया, लेकिन आपने उस टाइम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या कोई किताब पढ़ना या अपने किसी शौक को समय देना चुना, और आपको अपने इस फैसले पर खुशी भी है। तो दोस्तों, यही है जोमो, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जोमो हमें ये एहसास कराता है कि हर ट्रेंड का हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि हम अपने लिए सही डिसीजन लें और उस डिसीजन से सेटिस्फाइड भी रहें। जोमो अपनाने वाले लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को समझते हैं, डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, प्रेजेंट में जीना सीखते हैं और दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं।

तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे ज़ोमो यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट की। दोस्तों, ज़ोमो अपनाने के बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रिश्तों में अपनापन आता है और लाइफ में अधिक संतुलित महसूस होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कई साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि यदि हम रोज़ कुछ टाइम सोशल मीडिया से दूर रहें तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन, इनर पीस और इमोशनल बैलेंस बेहतर हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन का कुछ समय मोबाइल फ़ोन से दूर बिताएं, फैमिली से बात करें, म्यूज़िक सुनें, किताब पढ़ें, वॉक पर जाएं या कोई नया हुनर सीखें। और जब भी फोमो महसूस हो तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में कुछ ज़रूरी मिस कर रहा हूँ या सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर।

दोस्तों याद रखिए, हर ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने मन की आवाज़ सुनना ज़रूरी है। फोमो हमें यही सिखाता है कि हम क्या खो रहे हैं, जबकि ज़ोमो हमें ये एहसास दिलाता है हमारे पास पहले से कितना कुछ है। तो अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया कहीं आगे निकल रही है, तो एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और ख़ुद से पूछिए, क्या मुझे सच में वहाँ होना ज़रूरी है, या मैं जहाँ हूँ वहीं खुश रह सकता हूँ। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं सोनिका कौशल आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी युववाणी के अगले अंक में। तब तक मुस्कुराइए और ज़ोमो को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। नमस्कार।

0: इस वक्त आप सुन रहे आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड

हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342-1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल के तरफ से, मैं कुमार ऋतुराज, सबको जय हिंद।
1: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ

0: साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री स्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर, अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में, खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफ़र तो काफ़ी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी
0: तो सर, जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए।
1: जी, ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, तो हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे, जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे, वो पटना फ्रंटियर में थे। उनका, इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें। तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा, जो भी ऑपरेशन हुआ।
0: जी, यहाँ पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर, मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक बहुत
0: बता जी रहे हैं। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलुट ब्यूरो के थे, उनके साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ जीपीएस वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत ख़तरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी, उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
0: जी
1: इसमें। जी जी जी।
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर

0: आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज़्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है,
0: जी
1: लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको 2 बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहाँ आप पहुँचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला इनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: उसमें 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा।
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें,
0: अच्छा।
1: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और
0: जी,
1: हाँ सब मिलकर
0: एसएसबी की जी। टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के,
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा चलना स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की

0: से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ SSB का।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से BA ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने SSB ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
0: जी जी जी हाँ।
1: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
0: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
1: जी। फिर तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने SSB ज्वाइन किया, फोर्स।
1: अच्छा।
0: ज्वाइन किया। जी
1: जी। तो आपने स्कूलिंग के ज़माने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
1: अच्छा।
0: भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, वहाँ फिर NDFE के एक कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी, एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
0: हाँ हाँ
1: जी। इंडो भूटान, तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
0: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा।
0: असम जल रही थी NDFE का उससे।
1: अच्छा।
0: तो उसमें NDFE पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, हमारे बटालियन SSB बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें NDFE कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, GD मतलब जनरल ड्यूटी।
0: जनरल ड्यूटी जी,
1: जी
0: GD मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो हाँ। ये जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी।
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने CTC सलोनबारी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
0: सलोनाबारी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा, बेसिक ट्रेनिंग।
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन? हाँ, असम में आपने शुरुआत? अच्छा,
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से शुरुआत।
1: अच्छा,
0: हुआ जी।
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
0: हाँ, असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोसाई गांव में। जी जी।
1: अच्छा
0: जी, जी, जी।
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन UP में भी आप रहे?
0: हाँ हाँ, 32 बटालियन उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ, जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
1: अच्छा।
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी, वो रोटेट होके आ गई।
1: अच्छा।
0: असम में आ गई हॉली में जी।
1: ओके। तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युक्सुंग में मेरी पोस्टिंग हुई है।
1: अच्छा, एक चीज़ सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहाँ पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है?
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे STF वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी
0: जी हाँ।
1: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज़ को हम याद
1: अच्छा,
0: करते हैं जी।
1: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था?
0: जी
1: जी। तो इसको आप सबसे ज़्यादा याद रखते हैं?
0: जी, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे

0: चीज से हर बड़े चीज में
1: जी
0: जी जी जी।
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
0: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज़ हो जाता है।
1: जी जी,
0: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहाँ जहाँ था, वहाँ ना कोई टेक्निकल गजट पहुँचना संभव था, ना कुछ पहुँचना, ना आदमी पहुँचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी, कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो?
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसका फॉर्म, मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
1: जी,
0: तो
1: ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
1: जी, जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड RJ साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोध हैं फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम। आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफकोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशन के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए।
0: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है, तो नज़दीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
1: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
0: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिल करके ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज़ सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
0: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिल के काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
1: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिल करके एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
0: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
1: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीज़ें,
0: फोर्स से ही मैंने की। जी जी
1: जी जी, आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
0: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा ये जी।
1: अच्छा।
0: इसमें कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
1: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
0: सिखाया जाता है
1: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज़्यादा हार्श और ज़्यादा टफ होती है?
0: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
1: अच्छा
0: खाना है। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
1: ओके,
0: कैसे किससे

0: बात करना है, क्या खा कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अच्छा, चलने से लेके हर चीज़। और अच्छा, उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल अच्छा, से कैसे लड़ना है, आतंकवादी से कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है। जी,
1: पूरा टैक्टिक्स। तो ये इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर।
0: जी,
1: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके।
0: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें। जी, जंगल
1: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरनमेंट में अपने आपको ढालना होता है।
0: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है। अच्छा, ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
1: तो एक लीटर पानी में और वो भी 72 घंटे।
0: इस टाइप के ड्रिल उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
1: अच्छा। हाँ, तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
0: ये ट्रेनिंग करीब 1 महीने का होता है।
1: 1 महीना?
0: जी।
1: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
0: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
1: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर, वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है।
0: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
1: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया। और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
0: जी हाँ, तो हो जाता है उसमें।
1: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
0: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
1: अच्छा,
0: तो हाँ, तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
1: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
0: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है। अच्छा, अचानक सब चीज़ होता है,
1: पहले से नहीं बताते हैं?
0: नहीं, खाना बना रहे हैं आप पर कैंप अटैक हो गया।
1: ओके, हाँ, एक तरह से ड्रिल।
0: ड्रिल हाँ। अच्छा, ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है। जी,
1: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी जीदारी के साथ।
0: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
1: यानी कि एक भी कोई अगर कमजोर पड़ा, पूरी टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी।
0: तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है,
1: मोटिवेटेड रखने।
0: हाँ, ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप में ही उनको ढाला जाता है।
1: सर अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं है उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहाँ भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
1: जी,
0: ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
1: जी, आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर अच्छा करना है। जी, उसके अच्छा उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीज़ें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है,
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना।
1: जी जी,
0: उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: जी सर, ये जो अब जैसे हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब एंजॉय ही किए।
1: जी सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूँ
0: जी,
1: राजवीर का यहाँ पर मैसेज आया है।

0: बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूँ, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें ये मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया है। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है। नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, यह है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए।
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में। मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर क्या कहना है आपका इस बारे में जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूँ कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए
0: जी,
1: जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस अंतरिक्ष सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी। ये सर ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा,
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजीडी चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलके हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं।

0: नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं हैं तो उनको तुरंत आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहाँ काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिल के काम करेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए। मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज। इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी, सशस्त्र सीमा बल से।
0: जय हिंद आपको भी।
1: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर्स शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर

0: संदेश टू सोल्जर शो बहुत खूबसूरत शो है, जय हिंद, वंदे मातरम। यश शिंदे हैं ये मुंबई से, सर ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं। सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से,
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा, तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएँ अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
1: जी देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
0: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूँ, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
1: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा, आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त शाम के ठीक 5 बजे हैं। एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं मंडियाली लोकगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं कली चौहान और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत।

अभी आपने सुना कला कुमारी चौहान की आवाज़ में ये सुकेती लोकगीत। आइए आखिर में सुनते हैं अक्षर सिंह परमार की आवाज़ में मंडियाली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे मंडियाली लोकगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम प्रसारण में आइए अब सुनते हैं पंगवाली कार्यक्रम। हमारा यह हिमाचली बोलियों का कार्यक्रम अब FM शिमला पर भी रिले किया जा रहा है।

पंगवाड़ी कार्यक्रम शोणावाड़ी जी से विजेंद्रनंद ठाकुर नमस्कार। शोणावाड़ा आज तीसरी गलबात करी थी देशे सुरक्षा देशे रक्षा बारे। जे सैनिक आपो सेवाएं दें तो देशे रक्षा लिए जड़े खर देश अस्तित्व आता तड़े खर कई विकास साथ साथ देशे जे रक्षा सुरक्षा होती तसे भी बड़ी अहम कड़ी होती क्योंकि जिखे सौक जे मानस से सुरक्षित न हुआ तिखे सौक से कैसे भी क्षेत्र तरक्की न कर सकता। तो सब आपू असुरक्षा हमेशा डर लगा रहता। तो देशे कैसे भी देश अगर संसार

सत्य। तैसे विकास ता विकासात्मक जत भी कार्यक्रम बोलते हैं तो उसे अगर बढ़ते देश विरी विभिन्न प्रकार के खतरे जे देश हैं तो बोलते तस्किया अपना आप सुरक्षित महसूस करता तो हर क्षेत्र अंत से चौमुखी विकास कर सकता। आज देश ऐसा सुरक्षा तो जो है टाई सेनाएं से हैं जे टाई थल सेना जल सेना वायु सेना आपो आपू क्षेत्र तो देश रक्षा करते। ऐसे लिए क्यों तो कि जे देश मानुस है तंके योगदान बहुत जरूरी सा। वर्तमान काल आता सा हरते कि देशे सुरक्षा लिए जी युवा वर्ग सा तंकी अहम भूमिका सी। यह वक्त है कि तनी काफ़ी साल के लिए तनी सेना या तो नौकरी में थी सेवा करने मौका में था पर वर्तमान काल आता कुछ परिस्थिति बदली तस बजाय जो जे देशे नौजवान युवा से तंके लिए एक अलग सी अग्निपथ योजना पूरे देश आनी। ऐसी योजना तहत हालांकि तथा सेवाई मौका देता कुछ प्रतिशत जे सैनिक होते से 6 साल पर सेवा दी गई सेवानिवृत्त होते चाहे से जल सेना वायु सेना या थल सेना कसा तो भी अगर सैनिक भर्ती होते तो तैंके लिए 6 साल से कुछ सैनिक तथा 6 साल पता भी जे 25% सैनिक से सैंपूजी सेवा काल सत से संबंधित सेवा देना को थे तथा तो 15 साल लिए हो सेवा कर सकते ना तो जब बाकी बचों से 6 साल सेवा देने बाद हालांकि पुनर्वास करने लिए भी केंद्र सरकार तंके मदद करती। ऐसे तहत जब भी नौजवान सेना तो शामिल होते असहते कि 45,000 50,000 जे सैनिक से हर साल यानी राज गए भर्ती होते और यानी कि अंके अधिकांश के 6 साल सेवाएं होती तस हिसाब जो तनी जे पैसे जे बीते जे तंके तनख्वाह बांटी से भी मेती। हालांकि सिर्फ जे सैनिक से तंके लिए जे कमीशन अधिकारी से तनी बैठा चीज़ें लागू न होती से आपू जे जत भी तंके सेवा काल सा तस पूरा करते और से जे होते तंके जे सेवा होती से रेगुलर उत्फुट होती और जे कमीशन अधिकारी होते तनी बैठे देश जे सुरक्षा दायित्व आसा से सैनिक क्या ज़्यादा होता। भारतीय सशस्त्र बल आते एक विशेष जे अधिकारी होते कमीशन अधिकारी होते से रैंक रखते राष्ट्रपति जे संप्रभु शक्ति तहत से कमीशन आता नहते तनी आधिकारिक तौर पर तंके जिम्मेवारी होती देश सुरक्षा करा। हालांकि जे और सैनिक से नौजवान जे युवा वर्ग से 17 क्या 21 साल बुछ बुछ सेना लिए आवेदन काई काई सेना ते जे ट्राई हैं बल से था शामिल हो सकते। अगर अस हैते कि जे औसत आयु थी से यानी दाली के 32 साल थी जड़खा सैनिक यानी अंदर भर्ती करण शुरू किए तड़े पता 6-7 साल ऐसे जो औसत आई थी से घाट गई 26 वर्ष हो गए जिखे सैनिक 6 साल है जहाँ पर सेवा आई सी तनी समाप्त कही गई सेवानिवृत्त होते तनी वित्तीय लाभ जे

थियो अक्षर सिंह परमार आवाज अंत लोकगीत प्रार्थना है सब अंत साहित्य की हैं जे सुराल भटोरी सी से इस टाइम पैंग पूरे पैंगे अंत अगर असत तो काफ़ी सारे पर्यटक ऐसी जे रुख करण लगो से क्योंकि जे भी पर्यटक बाहर के आते से सब जगह घूम गई सुराल भटोरी पूज के से कुछ रोज तक ठीक ठहराव बनता तैंकी तनि पूरे पैंगे आता हालांकि और जगह तत नहीं पूजो जी आई टा भटोरी सोडान भटोरी परमार हिलुटान भटोरी सुराल भटोरी सुराल भटोरी जे सड़के वगैरह सब ठीक सी तो इसलिए जे पर्यटक से तठी झटती पूज गए थे तस बजाय जो आज पर्यटन है सब जो सुराल भटोरी सब क्या सही पर्यटक सतल बाणी को सब हाँ अगर सड़की के जे सड़के सी से ससुर पैंगे सौ पूजे तो पर्यटन है सब जो पैंगे बहुत अगर गए सकता और पर्यटन क्षेत्र तो बहुत सारी तरक्की कर सकता। ऐसे कुछ खास खास प्रादेशिक समाचार भारत जापान जे देश है तनि तंकी प्रधानमंत्री भारत प्रधानमंत्री तो जापान प्रधान सनाए तय के ची बुझा तो कई समझौते भे जैसा तो आर्थिक एक क्षेत्र से सुरक्षा फार्मास्यूटिकल रक्षा एआई सहित विभिन्न क्षेत्र से तथा तो ये नई दिल्ली आता हस्ताक्षर हुए साथ साथ शिखर सम्मेलन अंत या खोरी एक ही वरी जे संबंध से सुदृढ़ करने लिए भी बहुत सारे कदम उठाव बट गलबात हुई। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोलो कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण तहत रामजी राम अधिनियम 2005 देश अंत जे रोजगार से सुनिश्चित करने लिए अहम भूमिका जैसी से नवासी ताकि जे ग्रामीण क्षेत्र से कोई भी गरीब बेरोजगार न रहे सभी रोजगार में ताकि इससे अच्छा जीवन यापन जे गरीब मानस है ग्रामीण क्षेत्र में तो बास कर तैंक बोल तनि बोलो कि जे पहले 100 रोजे थे 100 रोजे जे काम थी 100 रोजगार थे से 105 रोज ऐसी योजना तहत का इस वर्ष इस योजना तहत 95,600 करोड़ जैसे पैसे से सबंटित हुए ऐसा थे खास खास समाचार कहते कहते या खुरु लोग की सुनते।

अथी भुवनेश कुमार आवाज अंत लोकगीत ऐसे लोकगीत साथ साथ बंगाली के कार्यक्रम में टाइम बहुत नरेंद्र ठाकुर दे जाए नमस्कार।

हिमाचली बोलियों के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे पंगवाली कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत।

अभी आप लोकगीत सुन रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किया जाएगा। हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR व DTH पर भी उपलब्ध है।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोलेगी। उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि हिमाचल वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। लाहौल स्पीति जिले के प्रसिद्ध छरमा यानी सीबक थॉर्न को जीआई टैग मिला है, जिससे अब इस औषधीय पौधे से बने उत्पादों को देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया है। सीबक थॉर्न को जीआई टैग मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
1: स्पीति घाटी के प्रसिद्ध छरमा यानी सिबकथोन को जीआई टैग मिल गया है। सिबकथोन एक औषधीय गुणों से भरपूर फल है, जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे जूस, जैम, हर्बल उत्पाद और कॉस्मेटिक सामग्रियां तैयार की जाती है। जीआई टैग मिलने से अब स्पीति छरमा और इससे बने उत्पादों को देश विदेश में अलग पहचान मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले लाहौल के पारंपरिक दस्ताने और जुराबों को भी जीआई टैग मिल चुका है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करवा रही है। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल के भावानगर में आज जनसमस्याएं सुनने और लोगों से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के समान विकास के लिए कार्य कर रही है। बाद में उन्होंने निचार ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित कार्यशाला को भी संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस ने आज से राज्य में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान अगले एक महीने में 8 से 10 हजार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले दिन आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे ब्रिजलाल ने 250 से अधिक सदस्यों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
2: संगठन विस्तार कार्यक्रम इसकी आज हमने शुरुआत की है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं और रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है और आज ब्रिजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 2.5 से 3

0: कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
1: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने वाला प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जन विरोधी नीतियों और विफलताओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। सिरमौर जिला के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में आज एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आग की इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कालाअंब पुलिस थाना के एसएचओ बलवंत सिंह ने बताया कि पुलिस व दमकल विभाग की टीमें मौके पर आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर आसपास के सभी उद्योगों को तुरंत खाली करवाकर काम बंद करवा दिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने की दर्दनाक घटना में एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला की जोगिंद्रनगर तहसील के लड़भिलोड़ गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर थी और आज सुबह म्याड़ नाला के पास बस रुकने पर ज्ञान सिंह ब्रश करने के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम प्रसारण में लीजिए अब प्रस्तुत है कांगड़ी बोली का कार्यक्रम। हमारा यह प्रसारण एफएम शिमला पर भी रिले किया जा रहा है।

कांगड़ी कार्यक्रम च असां अपनी श्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत करते। जिस पासे दिखा उस पासे बरखा बहार, कांगड़ी कार्यक्रम च कबूल करा वंदना राणा दा नमस्कार। श्रोतियो, जुलाई महीना लगी पिया कने बरखा दा महीना। इस महीने रुख बूटे लगाना चाहिंदे हन, कियां बूटे आसानियां ने लगी जांदे हन। इस महीने जित्थों दिखा उत्थों हरियाली दुस्ती, कने चोई पासे रंग बिरंगे फुल बूटे दिखी के मन बाग बाग होई जांदा है। ता मने जो खुश रखने ताई कुदरत कन्ने जुड़ने दा ए महीना है। इसका भी अपना एक अलग महत्व है। कने ये महीना जड़ा से असन जो ये संदेश दिंदा कि हर पल जड़ा से तुसा खुश रहा, कने खुशी दे पल दूसरों जो भी दिया। अज कांगड़ी कार्यक्रम च असा एक दे जुड़ियो गलबात लेके आयो हन, वन महोत्सव दा महत्व। जानकारी रहेंगी सूचना दे अधिकार दी, कने अपने देश प्रदेश दियां खबरां इस दे सोगी सोगी अपनी संस्कृति ने सरावो लोकगीत, जिसका आनंद तुसा इस कार्यक्रम च लेंगे। ये कार्यक्रम दा सीधा प्रसारण तुसा मीडियम वेव ते सौगी सौगी FM 103.7 MHz पर भी सुना दे हन। कार्यक्रम दी शुरुआत करते हन रूप लाल दे गाए इस लोकगीत कन्ने।

रूप लाल की आवाज़ च सुनिया तुसा ये लोक गीत। गल कहते हैं वन महोत्सव का क्या महत्व है। दिखा वन महोत्सव अहां दे मुल्क च हर साल मनाया जाने वाला रुख बूटे लगाने का अभियान है। इसका मकसद लोगों जो बूटे लगाने कने पर्यावरण जो बचाने दे प्रति

शांति विष्ट दी आवाज़ सुनांदे थे तुसां ए लोक गीत। सूचना दा अधिकार दी गल गांदे हन। सूचना दा अधिकार भारत दे हर नागरिक जो है अधिकार दिंदा कि सह सरकारी महकमिया दफ्तरां कने होर जगह ते उना दे कम्मा फैसले कने अभिलेखां दे बारे च जानकारी हासिल करी सके। इसका मकसद शासन च साफ गोई यानी कि पारदर्शिता जवाबदेही कने भ्रष्टाचार पर रोक लगी सके। इस अधिकार दी खास गल्लां दईयां हन। हर सरकारी महकमे च इक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त हुंदा है जिहड़ा कि सूचना मुहैया करांदा। कोई भी भारत दा नागरिक लिखित या ऑनलाइन आवेदन दे के मंगी सकदा है। खासकर 30 दिनां दे अंदर सूचना देना जरूरी है। अगर जिहड़ी तारीख है उस पर सूचना ना मिले या जिस ते संतुष्ट नहीं हन तां पहले या दूजे अपील कीती जा सकती है। सूचना दा अधिकार दे मकसद हन शासन च पारदर्शिता लियाउणा, सरकारी कम्मां च जवाबदेही होना, भ्रष्टाचार चो घट करना, नागरिकां चो शासन च भागीदारी दा मौका देना। सूचना दी मंग कीती जा सकती है। ये कियां हो सकता है? सरकारी योजना दा ब्यौरा, सरकारी खर्च दा ब्यौरा, सरकारी आदेश नियम कने अधिसूचना, फाइलां दी प्रतियां, दस्तावेज कने रिकॉर्ड, कुसी सरकारी कम्में दी तरक्की बारे जानकारी। किन्हां सूचना पर रोक है? कुछ सूचना जाहिर नहीं कीती जांदियां हन जियां कि राष्ट्रीय सुरक्षा बारे जानकारी, विदेश संबंधां जो प्रभावित करने वाले गोपनीय जानकारी, न्यायालय पासे ते प्रतिबंधित सूचना, कुसी माणू दी निजी जानकारी अगर उससे कुसी दा हित ना जुड़िया हो, व्यापारिक गोपनीयता कने बौद्धिक संपदा ने जुड़िया कुछ सूचना हन उन्हां पर रोक है। ता ए सूचना दे अधिकार च जानकारी दित्ती असां कने। हुण अपने देश परदेश दियां खबरां भी लगांदे हन। भारत कने जापान ने आर्थिक कने ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा कने AI समेत अलग अलग क्षेत्रां च कई समझौते किते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने अज नई दिल्ली च जापान दी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची दे सौगी वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन च दोनों पक्षों ने दोपक्षीय सहयोग के बारे सारे पहलुओं की समीक्षा की। इसके कन्ने ही पारंपरिक हित के क्षेत्र, क्षेत्रीय कने वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन च संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी होरां गलाए कि अज दे टैमे च सभदा विश्वास सब ते वड्डी दौलत है कने भारत जापान दी द्विपक्षीय साझेदारी समेत दी कसौटी पर खरी उतरी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर होरां गलाए कि CBSE स्कूलों च अध्यापकों की नियुक्ति मैरिट के आधार पर की जाएगी। अज शिमला च पत्रकारों ने गलबात करदे उन्हां गलाया कि प्रधानाचार्य की पदोन्नति नीति भी मैरिट के आधार पर ल्यांदी जाएगी। रोहित ठाकुर होरां गलाया कि इस बारे च सूची तकरीबन 90% तैयार हो चुकी है कने जरूरत पौने पर प्रस्ताव जो तैयार हो मंत्रिमंडल की मंजूरी वास्ते भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री होरां गलाए कि कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता च हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक च CBSE अध्यापकों जो मैरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है कने हुण मुख्यमंत्री होरां जो रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्हां साफ

दी आकाशवाणी शिमला केंद्र शु स्वंगलो प्रोग्राम रे राधिकेन दी भत्ते दिगी प्रोमिलो तरफे राम राम जुले जी साथी रे तोगल स्वंगलो प्रोग्राम अर्चन स्वंगलो रूठे रूठे गीत गुरेर के जी रेरोनी दीरा सादे इमिना खास खास खबरल जरूर शपोग त इफोगल गप्पा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पाठी शपोग त दुर्तिगे इफोगल गप्पा शोदो चिकित्सक अदु कुछ मना तो आऊँ लहरजेर तो दोर डॉक्टर अर तो दोरु दुर मानवता साजे सेवा कर शुरू मनुख अदु सेवा लाजा शुरू त दीपाठी गलगप्पा प्रोग्राम भी शपोग छाना कुशीलता दुर कि भई वैद्यो नारायणो हरि कुछ मना भारतीय संस्कृति उदी वाक्य जेते इच शलोक मस्त सादिरे दी डॉक्टर अदथल जी समाज तरफे राशि आदर्शु छन पुराना जमाना निये हिंदू देशा लहरजे दी आऊँ वेद्य तो दुर दो दी डॉक्टर आदि सदमा रूप माने चा तो दोनी छरी कुछ आऊँ घड़ी कष्ट आई तो सी इच तेजी नाथ पुशवा इच मनुख शुआ एनो जिंदगी उथल जी दू लड़ पी लेख शुआ दू वक्त रे दी ए डॉक्टर जी नाथ पदी एनाद ज्ञान दलते तजुर्बा है एना दू कुशलता रसा दे कोशिश लाजी खर कोई जिंदगी रणरिमी कम लजा तो दुर तांत मनुख दू दी सेवा उथल जी दो दू आदर हिंदी ले ये जू शिशु त गलगप्पा प्रोग्राम बीजा आई फोलू शपोग प्रोग्राम मुंडरी हिंजरे रोनी नीरू चांदो सक्सी दिगीत गीत

जी, गीत के जरिए तनी छोलणी छालणी कौते ता मुलवाड़िए तक छोलणी है। गल गप पशा जुम बोगी डॉक्टर दुबारे अदू आदर ले हेनर बत्ते मानु खदू कुर्मा फर्ज शु छान चिकित्सा हेंज गप्पा लादन ती जेते इच व्यवसाय या धुरा आजीविका कमाचे मी साधन हेंज मा मनेस्तनी। दित मार्ची टेजिनात पदू मनु खदू इलाजे सेवा ले लशु तांत कुर्दन की बई चिकित्सक और समाजो स्वास्थ्य सजग प्रहरी शुर दुर रात दिन तेजी कष्टरी आऊं तो सी मीर तो दुर नात पर तो दुर दो दू जिंदगी बचा चिमथल जे हमेशा छकन ब्रंजा तो दुर दो जी इच तेजी नात पो टेकू इलाज लेरा सादे दो दू आऊं हयारे सी जिंदगी शुआ दोरी उम्मीदो संजुआ तुप चिमी दो जी कम लजा तो दुर दो जी हर कष्टरी तोसी मी दू अंदरे विश्वास पैदा लेरा सादे मी दी खुशी रंजी रसा दे दो मो दी रूठे वस हंजी कंड्र दुर तांत हेल्लेरी डॉक्टरर मानवता दू नायक अर्शुर अधु सेवा उबजई समाज स्वस्थ सशक्त बने ब्रवा ते सादिरे गप अदिले हेले की भई तकनीक चाहे छिडे उन्नत शुजीरी दुई अबेल्ले इच डॉक्टरो इच मनुखो पचिए दाव भावना उठारी लेपची मारची इच टेजी नात पबी औषध बेजी मस डॉक्टरो प्रेसी आऊं इच जुड़ रूठे बसना श्वा दू दारा सादे चिंदारा सादे लासी दो गप्पा श्वा दोई रानी दो भी हिम्मत खोसी दीरा सादे गप्पा हेल्ले दी कि भई डॉक्टरो बीजाए नतपो बीजा विश्वासो रिश्ता ल रूठे बने की ब्रेन सहित इलाजो असर ल जुड़ गुना मस बेसा युवा कुर्मा आऊं इलाजो असर श्वा दू आईने मस शुजील जातो तांत दी भरोसा बनागता जे आई फुल मजबूत ले तो की वक्त भत्ते बे मोड़े जरूरत छू आऊं घड़ी मी दो स्वास्थ्य गप्पा लादन सहित हेल्ले गप्पा कि भई आऊं घड़ी हेंजी देशो।

जी गीत केन्द्रेश तनी नोमो अंग मोले सीटी अंग मोले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पाठी इफो गलगप्पा शाजिजुम्बोग सादिरे देशा तेया द्याँछो योजना र देशो सरकारो तर्फे चलासाई बिलेगी तो छारा सादे के नर जुड़ेगी ते दी योजना दु केन्जी फायदा लेप्ची तर्फोनी मोड़े मोड़े नगर नी क्वज क्वज नगर दु ब्रांजा छो आऊँ गरीब तबका तो दो दु था जी खास तौर तो दी योजना र चलासाई जी तो छन गप्पा लादन हेन्जी पीएम विश्वकर्मा योजनाओं त साल जुड़ हजार निजो शुमरी दी योजना चू शिशु छन दी योजनाओं तहत सरे पारंपरिक व्यापार दीरी जोड़े शैल जीतो व्यवसाय दीरी जोड़े शैल जीतो तो दी योजनाओं फायदा दी दे राशयो दो ध्यारी अगर के नरल दी योजना रसा दे जुड़ेगते दियो फायदा केंजी लेप्ची जून संसायत केंजी ले दी योजना फायदा लेप्ची तरसी बशर्ते कि भाई दी योजना थाल जी के नर पात्र शुरिनी कुजिमना आऊँ जी एनाद गुच्ची रानी है ओजार जिरानी कम लाजा तोदोर कारीगर अर तोदोर शिल्पकार अर तोदोर दो दी मुंडानी कुजमा शुरू नी लास्ट ताचे थलमुख कर ताचे मदद रंजिम थल जी दी योजना चू शिशु कुजमाना आऊँ कश्ती बनाचा मीर तोदोर दो दी लीलामो सामान अर बनाचा तोदोर यादोरा ठोलू घण छेणिर नुर बनाचा मीर तोदोर कुलीक बनाचिम कम लाजार तोदोर जाऊँ चीज बनाचा आऊँ सुयार अर तोदोर याद और हेंस दिकोन की आऊँ शो नंदे बनाचर तो दोर शो चीजर बनाचर मीर तो दोर मूर्तियों बनाचमी कम लजा तो दोर आऊँ सीऊ मूर्ति शुआदू बनाच दोर यादोरा राटू मूर्ति बनाच दोर यादोर राटी नक्शा बनाचा तो दोर आऊँ राग गो बे थाचा मीर तो दोर दोरल तो आऊँ जी बूट कपुल बनाच दोर दोरल धीरा सादे सादे आऊँ जी मिस्त्रियों कम लजा तो दोर सीऊँ कम लजार तो दोर यादोर फेंजर बनाच दोर रेठो रेस छन चटाई बनाच दोर प्रेग बनाचा तो दोर यादोर आऊँ जी पारंपरिक खिलौनार बनाच दोर दीरा सादे सादे आऊँ क्राची चा नायू कम ला यादोर कंठी बनाचिम कम ला खम चाचा आऊँ धोबी दुहेंज का पल्हा दनी यादोर आऊँ तू खम पिंड दर्जिर तो दोर दोरल तो मछली चुम जिमी आऊँ जाल बनाचा मीर तो दोर

पलहरिन सहित दोध इच त पहचान खोसा पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्रे आईडी कार्डो जरियाई ताँ दूर दियु थल जी पंजीकरण हेंज ग पलहदनी त दिसी दे शुआ मुफ्त शुआ कौशल उन्नयनों तहत छन गानी निज जाऊ बुनियादी ट्रेनिंग संग झा या दौरा दि बेजल मस्त ध्याड़ उन्नत प्रशिक्षण खोसा त बेसिक स्किल ट्रेनिंग मुंडरी छन ई बाउचर रूपे संग हजार टंगो टूल किट प्रोत्साहन ल दिरी राशयुआ छन केंद्रीय कंट्री लेगी तो दुखसा दिरे कि भाई दी योजना तहत अंजादी आईडी कार्डे सर्टिफिकेट रणरी रसा दे पंजीकरण लजा दी ट्रेनिंग रणरी रसा दे दो दी ढा ब्याज दर उटोई लोन ल ध्याचो मीजी लेपची तरसी दो दी लोन रणरी ट्रेनिंग यो सथल औजार अर तुम जिम थल जी संग हजार टंग राशा यो दो छन कंट्रे लेक तो दोग दी बेस चढ़े गा फीस दी ब्याज उटोई तुई छन इच लाख टंग खोज दो दू केंजी ब्या आऊ कुमा ध्याचो ढाबा केंजी लेप चितार्सी ऋण हेंजी ऋणों का पाल है लेख तो दोनी या दूर दो थल जरूरत पड़े पे पर मा आई किस तर जुड़ लख टांगो लोन ल केंजी लेप चितार्सी पीएम विश्वकर्मा योजना थल जी भारत नागरिक शुभी आई ने जरूरी तो आऊ गाड़ी हेंजी दियो पात्रता का पाल हादेन सहित सादे आवेदक को उम्र सारे साल अनि मस्त शुभी जुस धीरा सादे आऊ निंजो सा सालो हेंज का पाल हादनी दिबेजी ढा शुभी जुस छना आऊँ हैं जी ढा उम्र होगा पल्हा दें दू सारे तो आऊँ मास होगा पल्हा दें सही तो दू निंजो सा साल शुभी ताचे शुभी जूस हालांकि सरकारी सेवारी आऊँ लेगी मीर तो दोर दोर दी योजना थल जी पात्र मशहूर धीरा सादे सादे दी लगा पहले कि भाई इच परिवार हो जेते इच्चे मी दियो फायदा लेपची तरसी गप दी कि भाई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना खास मकसद कारीगर अदु कौशले दो दी टंग ढबो पाठी मदद रंजिशु दी योजना तहत मी दी गारा टंगो दैनिक भत्ता रंजिमल प्रावधान तो दी योजना थल जी अगर के नरपा तरशु इन सहित केंजी आवेदन ले तरसी अगर केंजी ऑनलाइन आवेदन ले जुन सहित केंदी दी थल जी आधिकारिक वेबसाइट आई जिते फार्म पिंज लेब दो अगर केंजी ऑफलाइन पिंच दन सहित केंदु कछरे की जनसेवा केंद्र आई जीते केंजी पंजीकरण लानी अगर केंदी पता तो कि भाई केनर दिश्रम सम्मान योजना फायदा लेप चिंता जी पात तरशुनी तो केंजी दी योजना रसा दे जुड़ेगी ते दियो फायदा जरूर लेप तुनी दी तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पाठी इफो जानकारी इमिना खास खास खबर केंद थल जी भारत जापान आर्थिक ऊर्जा सुरक्षा फार्मास्यूटिकल्स रक्षा एआई रसा दे शादे शादे क्षेत्र दु तेया समझौता दिग जुड़े लातोगु हिंदू देश जापानो हेंजगा पलहदनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नई दिल्ली जापानो प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची उर रसा दे वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरो वार्ता लातो सम्मेलन अर जुल्ला पक्षे द्विपक्षीय सहयोग भत्ते पहलू दु समीक्षा लातोगु ताँ धुरा आई खबर तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एकु तो की सीबीएसई सकूल दू मुंशी दु चयन मेरिटो आधार शो दो तो शिमंग छन शिमला हेंज ग पला दनी पत्रकार आदा सा दे दोई गप्पा फासा रिकु तो की भई प्रधानाचार्य दु पदोन्ती उन्नीति ल मेरिटो आधार रिये हंसा यो दो रोहित ठाकुर एकु तो की दि बारे रि सूची फोमे निंजो सा प्रतिशत छकंशु जिल जीतो तो जरूरत स्वीत सहित प्रस्ताव मंत्रिमंडलो मंजूरी थल जी चसा यो दो शिक्षा मंत्री कुतो की एरे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अध्यक्षता रिशुजी कैबिनेट सब कैबिनेटो बैठक करी सीबीएसई मुंशी दी मेरिटरी नियुक्ति रणरी सहमति बनेगा तो ना मुख्यमंत्री भी रिपोर्ट का सहयोग दो साफ लतो की भई सकूल अदु विलेव कम शैक्षणिक सत्रों बीजा मशो दो ता खबर तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कुतो की विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम जुड़ा जा निजोंगा देशा रोजगार पक्का ही ग्रामीण आजीविका मजबूत ले ये क्वज क्वज नगर तरक्की री तेजी हबीमी दिशारी इच अहम कदम शु इच कार्यक्रम अरे केंद्रीय मंत्री कुतो की योजना मकसद दीपक्का ही शु की भई अरिल गरीब मजदूर कम में मकेशरी त भत्ते दी कम खुसरी दे कुतो की योजना तहत कम रा ध्याड़नी बढ़ागते राउटो निजो गा ध्याड़ा लाजिकेश तो केंद्रीय मंत्री को तो कि भाई केंद्र सरकारे दी योजना था दी साल पिनी जो संग हजार त्रुरा

करोड़ टंग आबंटित ला तो राज्य सरकार एनो हिस्सा रम दो छैकुल व्यय इच लख निंजो सेदी हजार निराउटोई पिनिजो जुड़ करोड़ टंग शुजियो दो। ता खबर तो केंद्र सरकारे कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना जुड़ हजार निजो त्रुई अधिसूचित लजिके तो दी योजना निजो को जून अनि प्रभावी शुजील जा खर को योजनाई सस्कुराऊ निंजो सनेऊ कर्मचारी भविष्य निधि सकीमो ठारी लेपचु दो। दी योजना मकसद डिजिटल अनुपालन मजबूत लेशु प्रशासनिक दक्षता रे सुधार ले खाता दु ट्रांसफर योजी ले ये भविष्य निधि ढांचा खर कोई श्रम कानूनों अनुरूप बनाशु खर को योजना रे जरूरी ईपीएफ अंशदान कर्मचारी नियोक्ता झुल्लो तनख्वाऊ सनी प्रतिशत बने बनाओ दो। केंद्र सरकारों तरफे अऊ अधिसूचित प्रतिष्ठान अर्तो दो दुटोई सा प्रतिशत दर लागू बनाओ दो तो योजना री आंशिक निकासी नियम अर ल खर कोई लसाइल जितो दितो इमिना खास खास खबर र तो प्रोग्राम थलमुखरी हंजरे रोनी रिगजिन डोलमाय सादित सक्सी दी घुरे।

जी मास्टरा रामू चांदा हो अपना जिंदगी खत्म हो दिए गुरे रसा दे तो किसोंगलो प्रोग्राम वक्त यो सहिल जा ले पोगी इजाजत राम राम जुले।

0: tomorrow to attend the funeral ceremony of late Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Minister of External Affairs said the high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection between the two countries. The southwest monsoon today has further advanced into entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, and some parts of Rajasthan. Refreshing showers in the national capital provided much relief from hot and humid weather. The weather department has forecast thunderstorms accompanied by rain over many parts of the national capital during the day, with generally cloudy skies expected to prevail. In the FIFA World Cup, Spain will face Austria in a round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. In the other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:10 हुए हैं एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं कृषि जगत का कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आज के अंक में मैं हूँ हेमलता शर्मा।
3: मैं जयप्रकाश।
2: जयप्रकाश जी, क्या हाल चाल है आपके?
3: मैं ठीक हूँ हेमलता जी।
2: क्या आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में पानी खड़ा रह जाता है, और यदि पानी खड़ा रहा तो जड़ें सड़ जाएगी, पौधा मुरझा जाएगा और हमारी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना जया जी?
3: जी। तो किसान भाइयों, आज हम काम की बातों में बात करेंगे, पौध संरक्षण रसायनों का सुरक्षित प्रयोग के बारे में, और साथ ही साथ मनोरंजन करेंगे पहाड़ी लोक गीत के साथ, और इसी के साथ सुनाएंगे जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, बदलते मौसम में कृषि पर प्रभाव। और किसान भाइयों, आज काम की बातों में बात कर लेते हैं पौध संरक्षण रसायनों का सुरक्षित प्रयोग के बारे में।
2: जी किसान भाइयों, कृषि रसायन का पौध संरक्षण में विशेष महत्व रहता है, लेकिन इनका अंधाधुंध अनुचित अत्यधिक प्रयोग मनुष्य पालतू जानवरों के पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इनके जहरीले असर के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। छानबीन करने पर पता चला है कि जिन किसानों ने पौध संरक्षण रसायनों के सुरक्षित प्रयोग पर परीक्षण प्राप्त किया है, वे आमतौर पर इनका छिड़काव नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, यदि भी छिड़काव करना है तो जानकार व्यक्ति को ही इसका छिड़काव करना चाहिए, जिसे जानकारी ना हो तो उसे छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव करने वाले मजदूरों कामगारों को इनसे होने वाले खतरों का पता नहीं होता है, और ये मजदूर किसी भी तरह का सुरक्षा आवरण नहीं लगाते हैं और ना ही पहनते हैं। दो या दो से अधिक घातक कृषि रसायन एक के बाद एक या मिलाकर छिड़काए जाते हैं, जिससे इनकी घातकता और बढ़ जाती है। ऊंची फसलों जैसे कि कपास, अरहर आदि पर ये ध्यान दिए बिना छिड़काव किया जाता है कि पौध संरक्षण रसायन शरीर पर गिर सकते हैं।
3: किसान भाइयों, पौध संरक्षण रसायनों के अवशेष के बारे में अगर बात करें तो पौध संरक्षण रसायन विशेषकर कीटनाशक अवशेष से पैदा विषाक्तता बहुत हानिकारक होती है। इससे कई भयंकर रोग जैसे कैंसर आदि होते हैं। दिल दिमाग गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है। अधिकांश लोग इसके जहरीलेपन से परिचित नहीं है। सब्जियों में उपज आने के समय बहुत अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, और कीटनाशकों के प्रयोग और सब्जियों के तोड़ने में बहुत कम समय का अंतराल होता है। इस कारण सब्जियों के नमूनों में बहुत अधिक स्तर तक कीटनाशक अवशेष पाए जाते हैं।
2: किसान भाइयों, बात करें पौध संरक्षण रसायनों के अवशेष पाए जाने के क्या कारण होते हैं। पौध संरक्षण रसायन का अंधाधुंध प्रयोग, निर्धारित प्रतीक्षा अवधि का पालन नहीं करना, घटिया स्तर के पौध संरक्षण रसायन का प्रयोग करना, पौध संरक्षण रसायन के विक्रेताओं द्वारा किसानों को अधूरी सलाह देना व सिफारिशों के अनुसार पौध संरक्षण रसायन न देना, पौध संरक्षण रसायन का निर्माण इकाइयों से बाहर बहना तथा बहते पानी में मिलना, बचे हुई पौध संरक्षण रसायन का गलत ढंग से निपटारा या छिड़काव यंत्रों की ढंग से सफाई न करना, फल व सब्जियों को बाजार लाने से पहले पौध संरक्षण रसायनों से उपचारित करना। इनके जहरीलेपन को देखते हुए ये आवश्यक होता है कि इनके उपयोग के समय अधिक से अधिक सावधानियां प्रयोग में लाई जाए। पौध संरक्षण रसायन को खरीदने से लेकर छिड़काव करने तक पूर्ण कार्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किया जाना अति आवश्यक है।
3: किसान भाइयों, पौध संरक्षण रसायनों के चयन में अगर सावधानियों की बात करें तो पौध संरक्षण रसायनों के मानव, पशु, पर्यावरण और समस्त प्राणी जगत पर

0: विपरीत प्रभाव को देखते हुए इनका प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जब पौध संरक्षण के अन्य तरीकों से कीटों, बीमारियों और खरपतवारों का नियंत्रण संभव न हो। पौध संरक्षण रसायनों के प्रयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों, बीमारियों और खरपतवारों की संख्या को केवल आर्थिक हानि के स्तर तक ही कम करना चाहिए। खरीदने व परिवहन के समय जो सावधानियां रहती है किसान भाइयों, तो उसके लिए विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार ही रसायनों का चयन करना चाहिए। ये रसायन केवल पंजीकृत कीटनाशक विक्रेता से खरीदे जिसके पास वैध लाइसेंस हो। यह सुनिश्चित करें कि रसायन का पैकेट या डिब्बा कहीं से खुला या फटा तो नहीं है, बोतल की सील कहीं से टूटी ना हो और कहीं से रिसाऊ ना हो रहा हो। डिब्बे पर लिखी इस्तेमाल की आखिरी तारीख को ध्यान से पढ़े। आखिरी तारीख खत्म होने के बाद उन्हें न खरीदे। डिब्बे, बोतल या शीशी पर लिखे या उनके साथ दी गई पुस्तक या फिर सावधानियों को ध्यानपूर्वक पढ़े या फिर उनका पालन करें।
1: जी,
0: इन रसायनों के जहरीलेपन को बताने के लिए डिब्बे, बोतल या शीशी पर डायमंड के आकार का चित्र बना होता है। यदि लाल रंग का है तो इसका मतलब है कि रसायन अधिक जहरीला है। पीला रंग ये दर्शाता है कि रसायन जहरीला है लेकिन लाल रंग के मुकाबले में कम जहरीला है। नीला रंग पीले रंग से कम जहरीलेपन का सूचक होता है। हरा रंग सबसे कम जहरीलेपन का सूचक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस रसायन पर हरे रंग का डायमंड है वही जहरीला नहीं है।
1: किसान भाइयों, खरीदने के उपरांत इन रसायनों को अलग पैकिंग में ले जाएं, दूसरी वस्तुओं के साथ पैक करके ना ले जाएं। परिवहन के दौरान रसायनों को यात्रियों व खाद्य पदार्थों से दूर रखें। रसायनों को लादने से पहले उनकी अच्छी तरह से पैकिंग करें। कभी भी अधिक मात्रा में इन रसायनों को अपने सिर, कंधे, पीठ पर रखकर ना ले जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, एक क्षेत्र में एक बार के छिड़काव के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही रसायन खरीदें। अगर रसायन गिर गया हो तो मनुष्य पशुओं को इससे दूर रखें व इस पर मिट्टी या लकड़ी का बुरादा डाल दें। वाहन के प्रदूषित भाग को पानी से धोएं, दूषित खाद्य पदार्थों को जला दें या जमीन में दबा दें। यदि हम भंडारण के समय सावधानी की बात करें तो इन रसायनों को घर से दूर सुरक्षित स्थान पर ताले के अंदर रखें। भंडारण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर हो। भंडारण उस कमरे में ना करें जिसका प्रयोग रात को सोने के लिए किया जाता है। रसायन कभी भी खाने पीने और दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ ना रखें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, रसायनों को उन्हीं के डिब्बे, बोतल या शीशी में रहने दें। पेय पदार्थों की बोतल आदि में ना डाले।
0: किसान भाइयों, रसायनों का घोल खुले स्थान पर गहरे बर्तन में बनाएं। घोल बनाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बताई गई मात्रा को कम पानी में डालकर किसी लकड़ी के डंडे से घोले, फिर बताई गई पूरी पानी की मात्रा डालें। डंडे को धोने के बाद सुरक्षित स्थान पर रख लें। रसायनों को मिलाने के लिए विशेष बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए और हमेशा उन्हीं बर्तनों में रसायनों को मिलाना चाहिए। रसायन के पैकेट या शीशी को फाड़ कर या दांतों से खोलने की कोशिश ना करें। हमेशा पैकेट को कैंची या चाकू की मदद से खोलें। रसायनों को खोलते, नापते और मिलाते समय हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। नंगे हाथों से ना तो रसायन निकालें और ना ही उन्हें मिलाएं। रसायनों को उड़ेलते समय ध्यान दें कि ना तो ये इधर उधर फैले या फिर गिरना भी नहीं चाहिए जिससे इनके छींटे ऊपर पड़े। जिन रसायनों की धातुओं के साथ प्रतिक्रिया होती हो उनका घोल धातु के बर्तनों में न बनाएं। एक समय में उतना ही घोल बनाएं जितना कि छिड़काव करना होता है। स्प्रेयर के टैंक को ना सूंघें। घोल बनाते समय बच्चों या अन्य आदमी और पशुओं को पास में ना रहने दें।
1: जी किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं छिड़काव करते समय सावधानियां का जो आपने ध्यान रखना है। छिड़काव सुबह या शाम के समय करना चाहिए। ये रसायन आदमी के शरीर में इन माध्यमों से प्रवेश कर जाता है जैसे चमड़ी से, मुंह से, नाक से, आंखों से। छिड़काव करते समय जितना ज्यादा हो सके अपने शरीर को ढांप कर रखें। चेहरे पर मास्क, आंखों पर ऐनक, हाथों में दस्ताने, शरीर पर सुरक्षात्मक कपड़े और पांव में गंभूर पहने ताकि जहरीला रसायन शरीर के किसी भी भाग को ना छू पाए। खाने पीने की वस्तुओं को छिड़काव के स्थान से दूर रखें। छिड़काव करते समय खान पान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। छिड़काव करते समय ना तो बीड़ी, सिगरेट पिएं और ना ही तम्बाकू चबाएं। रसायन को जल आदि प्राकृतिक साधनों को दूषित ना करें। छिड़काव करते समय बच्चों, अन्य व्यक्तियों तथा पालतू पशुओं के छिड़काव क्षेत्र से दूर रखें। बंद नोजल को मुंह से फूंक मारकर साफ ना करें, इसे पानी या तार टूथब्रश से ही साफ करना चाहिए।
0: जी
1: किसान भाइयों, ये तो थी जानकारी पौध संरक्षण रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के बारे में। अब आपको इंतजार होगा प्यारे से लोकगीत का। आइए सुनते हैं राजेश।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत राजेश टिमटा की आवाज़ में। तो किसान भाइयों, आइए सुन लेते हैं जानकारीपूर्ण बातचीत। बदलते मौसम में कृषि पर प्रभाव, बातचीत में भाग लेंगे खेमचंद कश्यप और उनसे बातचीत करेंगे कुलदीप।
1: किसान और बागवान भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर आपको विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी देते रहते हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी की जाती है। आजकल के समय में मौसम में बहुत बदलाव हो चुका है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ जाती हैं या फिर कई बार बहुत सूखा पड़ जाता है। तो ये जो सारे के सारे मौसम के जो बदलाव आता है, मौसम में बदलता मौसम होता है, इसके कारण क्या होता है कि कृषि और बागवानी का जो हमारा उत्पादन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो देखिए, किसान और बागवान भाई बहनों, बदलते मौसम का जो कृषि पर है वो किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, इसी विषय में आज हम बातचीत करेंगे अग्रणी किसान खेमचंद कश्यप जी से, जो कि हमारे बीच आज उपस्थित है। तो सबसे पहले तो हम अपने इस कार्यक्रम में खेमचंद कश्यप जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सभी का।
1: तो देखिए, अगर हम बात करें कृषि और बागवानी की, देखिए आप तो काफ़ी समय से कृषि और बागवानी करते आ रहे हैं, लेकिन कृषि और बागवानी समय के साथ बदलती जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव जो इसमें हुआ है वो है मौसम की वजह से, क्योंकि काफ़ी समय पहले की बात करें तो समय पर सर्दी होती थी, समय पर गर्मी भी होती थी, बरसात भी समय पर होती थी। तो उससे क्या होता है कि उत्पादन जो है वो आपका, चाहे सब्जी की बात करें हम, चाहे फल फसलों की बात करें, काफ़ी अच्छा होता था। लेकिन जो आजकल के मौसम में अगर बदलता जो मौसम हो रहा है, इसके कारण कृषि पर किस तरह के दुष्प्रभाव है, किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने शुरू में ही कर दिया कुलदीप जी। जब हम खेती करते थे आज से 10-20 साल पहले, क्योंकि मैं तो लंबे समय से कृषि कर रहा हूँ, सारा ही बचपन कृषि पे बीत गया है।
1: जी
2: क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है 80% जो किसानी जो है वो वर्षा पर आधारित होती है। हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो लगभग 20% खेती हमारे पास ऐसी है जहाँ की हम सिंचाई की सुविधा से अपनी फसलों को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। परंतु आज के टाइम में ये हो गया है कि ना तो समय पे बारिश होती है, अगर होती है तो इतनी होती है कि वो लाभ तो क्या उसकी हानि होती है। होता यूँ था कि जब जून में जो है ना, हमारे पहाड़ी उसमें जो गन्ना होती थी जेठ पहाड़ी में, 12 और 18 की बाज पड़ती थी
1: जी
2: मक्की के लिए। बहुत बुजुर्गों से सुनते गए जी 12 और 18 की जो है बारिश होगी और होगी। 2 दिन ऐसे होते थे जेठ के महीने के कि उसमें बारिश होती थी। परंतु तो आज का समय कुछ ऐसा हो गया, तो मतलब ये चीज़ है कि या तो बारिश होगी तो ऐसे टाइम पे होगी कि जो हमारी लगी फसल है या हमारी जो काटी हुई फसल है उसको प्रभावित करता है, उसको नुकसान होता है। या तो बारिश ही नहीं होगी, अगर होगी तो इतनी होगी कि हमारी जो फसल है उसको नष्ट कर देती है। तो इस तरह से आज देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, बागवानी की अगर बात करें तो बागवानी में आज ये हो गया कि जब इसमें फूल आता है, सेब की बात करो, आड़ू की बात करो, कि तो ऐसा मौसम बिगड़ जाता है कि उसमें सेटिंग ही नहीं होती है। और किसान बागवान इतना परेशान है, ना तो ये हमारे बस की बात है, ये प्राकृतिक एक आपदा है, इससे हम कैसे बचे, क्या करें, क्या विकल्प ढूंढे, इसी विषय पर हम कुछ थोड़ी सी आज किसानों को जानकारी देंगे।
1: जी तो जैसे आपने बात की कि जो बदलते मौसम के कारण क्या हो रहा है कि हमारी जो कृषि है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है, उत्पादन पे असर पड़ेगा, हमारे जो आय है किसान और बागवान भाई बहनों की वो भी कम होती जाएगी। तो कम होने से क्या होगा कि हमारे जो बहुत से किसान और बागवान भाई बहनों, वो कृषि और बागवानी को छोड़ करके कहीं और किसी व्यवसाय में जाने की और कोशिश करेंगे। उसको देखते हुए हम

0: हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को व्यवसाय को बदलने के बजाय उन्हें अगर कृषि में ही जुड़े रहना है तो कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान हमारे सभी किसान और बागवान भाई बहनों को रखना है कि जिससे कि वो अच्छा लाभ इस तरह के मौसम में या बदलते मौसम के कारण कृषि और बागवानी से प्राप्त कर सके।
1: जी हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए कुलदीप जी, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा किसानों को। अगर हमने बुआई करनी है तो एक तो हमें ऐसी फसलों का चयन करना है, ऐसी किस्मों का चयन करना है जो कि अर्ली हो। अगेती बुआई में मैंने देखा प्रैक्टिकली रूप में कि भाई जो हमने अर्ली बुआई कर ली, अगेती बुआई कर ली, उसमें हमें कहीं ना कहीं अच्छा लाभ मिल जाता है। एक बात। दूसरी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज किसान इतना जागरूक हो रहा है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनसे मैं ऐसा आग्रह करना चाहूँगा कि आप ऐसे बीज तैयार करें जो कि हमें सही समय पर अर्ली बुआई में अच्छा लाभ मिले। और दूसरी मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमें जो है कुछ और चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अब मक्की की बात करें तो हम मक्की हमारे पास ऐसी ऐसी किस्में हैं जो कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने अर्ली कंपोजिट एक ऐसी किस्म है, खाने में इतनी स्वाद है, इतनी बढ़िया है, उसकी भी आप बुआई करें क्योंकि उससे भी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास पॉली हाउस की हम बात करें, पॉली हाउस भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें ना कोई प्राकृतिक आपदा का कोई इतना ज़्यादा इसमें प्रभाव हो, तो फूलों की खेती हम इसमें कर सकते हैं और जी पॉली हाउस में हम सब्जी की खेती कर सकते क्योंकि हमने अपनी आय को अर्जित करना है।
0: जी, लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए।
1: एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल का जो किसान है ना, वो ज्यादा पर जो है लेबरों पर निर्भर है। हम अपनी खेती को जो है स्वयं उसकी मेहनत करें, हम पहले भी करते थे, अच्छी किस्म लगाए, गुड़ाई नदाई अच्छी हो। और पहली बात, पशुपालन हमने छोड़ दिया। पशुपालन से एक फायदे नहीं है, अनेक फायदे हैं। एक तो हमें दूध घी मिलता है, दूसरी जो हमारी खेती होगी, चाहे हम कौन सी किस्म भी करें, चाहे हम प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें या दूसरी खेती करें, तो इसके लिए पशु का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पशुपालन हमने छोड़ दिया। पशुपालन के लिए मैं एक सुझाव दूंगा अपने किसान भाइयों को कि पशुपालन भी हमारे लिए एक ऐसा एक व्यवसाय है जिसके लिए कि हम अगर एक गाय अगर हम सवेरे खरीदेंगे तो शाम को अपना उत्पादन दे देगी। पशुपालन भी हमारे लिए एक अच्छा विकल्प है, खेती के लिए भी और जी अपने सेहत स्वास्थ्य के लिए भी। इसके अलावा हम मशरूम की खेती भी एक ऐसा विकल्प है जो कि हम मशरूम के उत्पादन से भी अपनी आय को कहीं ना कहीं अर्जित कर सकते हैं और हमने अपना लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा मुर्गी पालन भी एक ऐसा व्यवसाय है जो कि मौसम पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, इससे भी हम अपनी आय अर्जित कर सकते हैं। बहुत से विकल्प हैं, हमें अपने विकल्प ढूंढने होंगे कि भाई हम अपनी आय को कैसे अर्जित करें।
0: जी खिमचंद कश्यप जी, जो पुरानी फसलें जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगाते हैं, व्यावसायिक खेती अगर वो करना चाहते हैं तो उसके कारण जो पुरानी जो फसलें वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं, तो क्या पुरानी जो फसलें जो पुराने समय में हमारे किसान भाई अपने खेतों में लगाते थे उससे भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी फसलें लगा सकते हैं जिनको लगाने से ये जो बदलते मौसम के कारण दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है इसका असर कम से कम हमारे किसान भाई अपने अनाज उत्पादन या अन्य फसलों के उत्पादन के लिए कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल आपका। देखिए जो हमारी परंपरागत खेती थी, जैसे हमारे मोटे अनाज, क्योंकि आज मोटे अनाज की बात करें, मिलेट के अनाज की बात करें, क्योंकि आज इसकी इतनी बड़ी डिमांड है कि भाई हर आदमी चाहता है कि हमें अच्छा भोजन मिले और वो चीज़ मिले जिसे हमारा सेहत स्वास्थ्य सही रहे। तो मोटे अनाज में आपको देख लो कौनी है, कोदा है, बथुआ है, चीना है, और ये बहुत से ऐसे हमारे पास ऐसी चीज़ें जो कि इस पे जो है मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारे सैकड़ों वर्षों से इसको लगाते आए और इससे हमारा जो सेहत स्वास्थ्य है इतना स्वस्थ रहता है कि ये आज इसकी मांग भी है और जिस ज़रूरत भी है हमारे लिए उसको खेती करने के लिए, और इसमें जंगली जानवरों का भी बहुत कम प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं इसमें भी हमें आगे आना चाहिए और इसकी खेती करनी चाहिए, और इससे हमारे को कभी भी हम इसको बेच सकते हैं। इसका ये नहीं है कि भाई हमने अभी तैयार किया अभी बेचे, इसको हम 100 साल बाद भी बेच सकते हैं, 50 साल बाद भी बेच सकते हैं, क्योंकि ऐसी फसल है कि ये सैकड़ों वर्षों तक जो है सुरक्षित रह सकती है।
0: जी, अगर हम फल फसलों की बात करें तो ऐसे कौन सी फल फसलें जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं जो ये बदलते मौसम के कारण का जो दुष्प्रभाव है कम से कम हमारी फसलों पर यानी हमारी आय पर इतना ज्यादा असर उसका ना पड़े?
1: देखिए जहाँ तक फल फसलों की बात है, हमारी एक होड़ है कि जी सेब की खेती हम करें, मतलब कहीं भी सेब के लिए ऐसा एक क्लाइमेट है, ऐसा एक वातावरण है जहाँ के सेब होता है, अगर हम उसको उसी कंडीशन में लगाए जहाँ के उसके लिए वातावरण अनुकूल है वहाँ लगाए तो उसे अच्छा हमें लाभ मिलेगा। अगर हम ये सोचें कि जी हर क्षेत्र में सेब होता है, ठीक है वो हो सकता है, परंतु जो उसकी गुणवत्ता है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, तो सेब उसी

0: में लगाए हैं जहाँ उसके लिए जलवायु अनुकूल है। बाकी और फसल हमारे पास की भी हमारे पास ऐसी फसल है जिसके कि अच्छे दाम मिल रहे हैं और इसमें जंगली जानवरों का भी कोई प्रभाव नहीं देखने को मिला है, क्योंकि मैंने खुद भी 5 साल के बाद सेब के पौधे काटने पड़े और फिर मैंने उसमें कीवी की प्लांटेशन की और 4 साल में मैंने इतनी अच्छी क्रॉप ली है, मैं इतना बढ़िया कह सकता हूँ कि उसमें ना तो किसी जंगली जानवरों ने अटैक किया और मेरे लिए वो एक लाभकारी सिद्ध हुआ है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो निचले क्षेत्र में आप करें, अनार की खेती हम कर सकते हैं, आड़ू की खेती हम कर सकते हैं, खुरमानी की खेती कर सकते हैं, मतलब जहाँ जिस फल फ्रूट के लिए मौसम अनुकूल है उसी चीज़ के लिए बढ़ावा देना चाहिए। जबरन नहीं करना चाहिए हमारे को कि नहीं वहाँ भी हुआ हम भी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, होड़ में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने क्षेत्र के आधार पर जो है अपनी फसलों का उत्पादन करना चाहिए।
1: जी, आपने बात की कि अगर फल फसलें हमारे किसान भाई लगाना चाहते तो कौन सी, जैसे कीवी की आपने बात की कि कीवी से भी अच्छा उत्पादन या अच्छा लाभ हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। देखिए, बदलते मौसम के कारण अगर हमारे किसान भाई कृषि और बागवानी को छोड़ करके, यानी अगर कृषि और बागवानी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, तो क्या हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों की अगर हम बात करें तो औषधीय पौधे कौन से औषधीय पौधे पाए जाते हैं और किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसका उत्पादन कर सकते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैंने खुद भी इस पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है औषधियों के ऊपर, तो औषधियों के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं क्योंकि इस पे भी कोई मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अपने नेचुरल प्रोसेस में चलते हैं। जैसे अगर हम निचली बात करें तो हरड़ भेड़ा, आंवला और जी अतीश पतीश, ये आजकल इतनी बड़ी मांग है। और आप थोड़े ऊपर के एरिए में जाइए तो जीरा, काला जीरा, केसर, ये चीज़ें ऐसी है कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छा लाभ देने वाली फसलें हैं। तो अगर हम इसमें भी कहीं थोड़ा सा कुछ अपना रुझान करें तो इससे भी हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि इस पर जो है मौसम का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर भी हमें जोर देना चाहिए। फूलों की खेती, फूलों की खेती भी अगर आपके पास पॉली हाउस है, पॉली हाउस में आप फूलों की खेती करना चाहिए, वो भी एक सुरक्षित खेती है जिसे भी हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बहुत से विकल्प हमने ढूंढने हैं कि भाई हमें कहाँ से अपने आय में बढ़ोतरी हो। और पशुपालन तो मैंने कहा ही था कि भाई पशुपालन तो हमारे लिए एक आजीविका का एक साधन है, बहुत से विकल्प हैं हमारे पास, परंतु हमें मौसम को देख करके अपने तौर तरीके को भी बदलना होगा।
1: जी, तो देखिए खेमचंद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बदलते मौसम में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इन प्रभावों को कम करने के लिए हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन वो क्या कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी जो साझा करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, ये तो सुनी आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था बदलते मौसम में कृषि पर प्रभाव। बातचीत में भाग ले रहे थे खेमचंद कश्यप और उनसे बातचीत कर रहे थे कुलदीप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी पूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे, क्योंकि जानकारी का होना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। यदि जानकारी हो तो कार्य करना आसान हो जाता है, समय की बचत होती है, कार्य अतिशीघ्र हो जाता है।
3: तो किसान भाइयों, आइए सुन लेते हैं फिर से एक पहाड़ी लोकगीत विमला देवी की आवाज में।

0: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने पहाड़ी लोकगीत, गायिका थी बिमला देवी। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कल के मुख्य आकर्षणों की। काम की बातों में बात करेंगे अमरूद का बगीचा कैसे लगाएं, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय रहेगा खरीफ मौसम में किए जाने वाले कृषि कार्य। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा। हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR व DTH पर भी उपलब्ध है।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप पहुंची ओमान। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति, पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार, सीबीएसई स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को विस्तार प्रदान करने और राज्य के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी के तहत हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप ओमान पहुंची है। वहां के लोगों ने हिमाचल के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता व स्वाद की सराहना की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खुलेगी। उन्होंने बागवानों से गुणवत्ता, ग्रेडिंग और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया, ताकि हिमाचल वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले फलों के आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सके। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जिसमें पर्यावरण अनुकूल और अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। आज नाहन में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस नीति में स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर जोर रहेगा।
1: हमने अपनी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, जिसमें कि हम ज्यादा प्रमोट, हम जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूनिट्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। जो वाटर कंज्यूमिंग यूनिट्स हैं, जैसे एथेनॉल का बहुत चलन है, उसको हम डिस्करेज करेंगे। पावर कंज्यूमिंग यूनिट्स है, सरिये वाले यूनिट्स है, उसको हम प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसी यूनिट्स को हम प्राथमिकता देंगे जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और हमारी कोशिश है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, वहां पर हमारी इंडस्ट्री जाए, ताकि हमारे जो फ्रूट बेस्ड है, फूड बेस्ड है, हमारे कोल्ड स्टोरेज चेन्स है, इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी जल्द आने वाली है।
0: उद्योग मंत्री ने बताया कि आरडीएस योजना के तहत सिरमौर जिले में 157 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि बिजली सेवाओं को मजबूत किया जा सके। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर की जाएगी। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्यों की पदोन्नति नीति भी मेरिट के आधार पर लाई जाएगी। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में सूची लगभग 90% तैयार हो चुकी है और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्नि

0: होत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में सीबीएसई अध्यापकों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने पर सहमति बनी है और अब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूलों के विलय का कार्य शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा।
1: मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो, उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई, उसके आधार पर ये सारी बातें हो तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी इसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियां शीघ्र हो।
0: सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। आज सोलन में आयोजित जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को भी कहा। सुरेश कश्यप ने सभी खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
2: सोलन जिला की दिशा की बैठक थी और इसमें हमने भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं इसका रिव्यू किया और की समीक्षा करके हमने निर्देश भी दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से जो इन योजनाओं को पूरा किया जाए। हमने पीएमजीएसवाई की जो हमारे सड़कें जिनका निर्माण का काम चल रहा है और हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ लगभग 52% रोड्स ऐसे हैं जो पीएमजीएसवाई के तहत बने हैं।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगर निगम सोलन के महापौर और उप महापौर के चुनाव आज संपन्न हुए। इसमें भाजपा की चार बार की पार्षद सुषमा शर्मा महापौर जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े गौरव राजपूत उप महापौर निर्वाचित किए गए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सभी 17 वार्डों में एक समान विकास करवाने की प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भरोसा भी दिलाया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम सोलन में भाजपा की महापौर सुषमा शर्मा और गौरव राजपूत को उप महापौर निर्वाचित होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये जीत लोकतंत्र, जनविश्वास और सुशासन की राजनीति की जीत है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परिणाम स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों से निराश है और जनप्रतिनिधियों के विवेक के सामने सुक्खू सरकार की साजिशें नाकाम साबित हुई हैं। लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल में पहाड़ी से पत्थर गिरने की दर्दनाक घटना में एचआरटीसी के परिचालक ज्ञान सिंह की मौत हो गई। ज्ञान सिंह मंडी जिला के जोगिंद्रनगर क्षेत्र के लड़बड़ोड़ गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार बस अपने निर्धारित रूट पर थी और आज सुबह म्याड़ नाला के पास बस रुकने पर ज्ञान सिंह ब्रश करने के लिए नीचे उतरे थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर उनके सिर पर आ गिरा जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि प्रदेश में 2 दिनों के भीतर पत्थर गिरने से मौत की ये दूसरी घटना है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने आज नाहन में महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति की राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर प्रदेश व केंद्र सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रदेश सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने और रोजगार के अवसर बढ़ाकर आम जनता को राहत देने की मांग की है। संतोष कपूर ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
3: इस विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के अंदर जो है हमारा देश की जो सरकार है उसके प्रति आक्रोश है, देश और प्रदेश की सरकार को भी साथ में कि ये जो देश के अंदर प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जो हालात आज बने हुए हैं उन हालातों के ऊपर अभी भी कंट्रोल कीजिए, अन्यथा जो है देश के अंदर आक्रोश और महिलाओं का रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में हम ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर रसोई गैस की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो ये आक्रोश जो बढ़े।
0: प्रदेश कांग्रेस ने आज से राज्य में संगठन विस्तार अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान

0: अगले एक महीने में 8 से 10 हजार लोगों को पार्टी में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले दिन आज शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रामपुर से 2 बार भाजपा प्रत्याशी रहे ब्रिजलाल ने 250 से अधिक सदस्यों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
1: विस्तार कार्यक्रम इसकी आज हमने शुरुआत की है। माननीय कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ है और रामपुर से हमने इसका शुरुआत किया है और आज ब्रिजलाल जी रामपुर से संबंध रखते हैं और ये अपने कम से कम 250 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ है और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी को ज्वाइन किया। इसी प्रकार के प्रोग्राम जो है हम पूरे प्रदेश भर में चलाएंगे और पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
0: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस

0: पूरे प्रदेश में लगभग हम 8 से 10 हजार लोगों को जोड़ेंगे।
1: दूसरी ओर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होने का दावा पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी जन विरोधी नीतियों और विफलताओं से प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का राजनीतिक नाटक कर रही है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल से पहली बार चेरी और प्लम की खेप पहुंची ओमान। मुख्यमंत्री ने कहा, इससे किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश में जल्द लाई जाएगी नई औद्योगिक नीति। पर्यावरण अनुकूल व अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के अनुसार, सीबीएसई स्कूलों में मेरिट आधार पर होगी अध्यापकों की नियुक्ति। नगर निगम सोलन में महापौर पद पर भाजपा की जीत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सुक्खू सरकार की साजिशें हुई नाकाम। और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले महिलाओं ने नाहन में किया प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन, हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, प्रस्तुत है रोजगार सूचना। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी जिला मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पदों को भरने हेतु इच्छुक स्थानीय महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सरकार द्वारा क्रमशः 10,500 और सहायिका को 5,800 यानी कि 5,800 रुपये व समय समय पर निर्धारित दर पर प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। पंचायत और वार्ड का नाम है टिक्कर। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी का केंद्र है वह टिक्कर। कार्यकर्ता का पद भरा जाना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15/7/2026 है और इंटरव्यू है 21/7 को। इसी तरह से आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो टिक्कर ही है, यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का भी पद भरा जाना है। इसके लिए जो पर्यवेक्षक वृत्त है वो नंगवाई है, और इसके लिए भी जो साक्षात्कार की तिथि है 21 तारीख है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 तारीख है। इसी तरह से राहला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है रूपा, यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। इसी तरह से शिल मशोरा आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। चेटीगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र में त्रैल के अंतर्गत यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। पंचायत जलाकाशना आंगनबाड़ी केंद्र है खेणी, यहाँ पर भी आंगनबाड़ी सहायिका का पद भरा जाना है। जो पर्यवेक्षक वृत्त है वो नाव है। यहाँ पर सभी जगह के लिए आपको जो आवेदन करना है उसके लिए अंतिम जो तिथि है वो है 15 जुलाई और जो इंटरव्यू है यानी कि साक्षात्कार है वो 21 जुलाई को होगा SDM कार्यालय बाला चौकी में। तो इच्छुक उम्मीदवार अब आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित कार्यालय बाल विकास परियोजना मंडी सदर जिला मंडी में जमा करवाएं तथा साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत रूप से आप वांछित मूल दस्तावेजों सहित उपमंडलाधिकारी बाली चौकी जिला मंडी के कार्यालय में दिनांक 21/7/2026 को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो जाएं। इसके लिए जो और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी

0: के जो दूरभाष नंबर है 01905225540 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी रोजगार सूचना, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

एफएम शिमला सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा एफएम स्टेशन आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

साथियों, हमारा ये कार्यक्रम भूले बिसरे गीत उन सुनहरी यादों को समर्पित है जो समय के साथ भले ही पीछे छूट गई हों, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं, जिंदा हैं। पुरानी यादें, पुराने गीत, पुराने किस्से और बीते हुए पल हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। और कहते हैं ना कि यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे समय समय पर मुस्कुराकर हमें फिर से उन खूबसूरत लम्हों में ले जाती है। जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम भी उसी एहसास को आप सभी तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। तो आइए, बिना किसी विलंब से हम इस यादगार सफ़र की शुरुआत करते हैं।

और साथियों, कितना सुरीला और दिल को छू लेने वाला गीत था ना। और पुराने गीतों की यही तो खासियत होती है ना, समय बदल जाता है लेकिन इसका जादू कभी ख़त्म नहीं होता। और साथियों, अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। ये गीत उस दौर की याद दिलाता है जब संगीत में सादगी, शब्दों में गहराई और आवाज़ में आत्मीयता अंदर तक हुआ करती थी।

साथियों, सचमुच पुराने गीतों की मिठास कुछ अलग ही होती है और सरल शब्द, मधुर धुन और दिल को छू लेने वाली आवाज़, यही तो इन गीतों की पहचान है। और साथियों, अब पेश है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ में अगला गीत, और ये गीत भी अपने दौर में श्रोताओं की जुबान पर था।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर

0: ₹80 प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए ₹30 प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखे युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
3: संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि यादों का खजाना भी है। कई बार कोई पुराना गीत सुनते ही बचपन या जीवन के कुछ खास पल आंखों के सामने आ जाते हैं। अब सुनते हैं एक और ऐसा ही अनमोल गीत।

साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत और इसके बाद आइए सुनते हैं उदित नारायण की आवाज़ में डर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिव हरि ने।

इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:45 को होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस

0: समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
2: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
3: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
2: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के

सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन

0: दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 9:15 हुए हैं और FM शिमला पर आइए सुनते हैं एक फिल्म से कार्यक्रम। और आज की फिल्म है धरती। साथ ही धरती फिल्म एक हिंदी एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसका निर्देशन CV श्रीधर ने किया था। और फिल्म में राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान, बलराज साहनी और अजीत मुख्य भूमिकाओं में है। और ये तमिल फिल्म सिवंदामन की हिंदी रीमेक फिल्म है। चलिए फिल्म की कहानी की बात करते हैं। और कहानी वसंतपुर नामक एक छोटी रियासत की है, जहां एक दयालु राजा शासन करता है, लेकिन उसका लालची और क्रूर दीवान सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। वो जनता पर अत्याचार करता है और विरोध करने वालों की हत्या करवा देता है। इसी रियासत में रहने वाला भारत यानी राजेंद्र कुमार एक देशभक्त और साहसी युवक है। वह विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटता है। वहाँ उसकी मुलाकात राजकुमारी चित्रलेखा से होती है और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। जब चित्रलेखा को अपने राज्य की बदहाल स्थिति का पता चलता है तो वह वापस लौटने का निर्णय लेती है और भारत भी उसके साथ आता है, ताकि अत्याचारी दीवान के खिलाफ संघर्ष कर सके। और रास्ते में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, लेकिन दोनों जीवित बच जाते हैं और गुप्त रूप से वसंतपुर लौटते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए राजकुमारी ज्वाला के नाम से रहती है।

फिल्म में भारत अपने साथियों के साथ मिलकर दीवान के खिलाफ विद्रोह करता है और संघर्ष में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, लेकिन भारत हार नहीं मानता और दीवान के महल तक पहुंच जाता है और दीवान राजकुमारी का अपहरण कर भागने की कोशिश करता है, पर भारत उसका पीछा करता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष होता है जिसमें भारत दीवान को मार गिराता है और इसके बाद वसंतपुर में शांति लौट आती है और भारत और चित्रलेखा का विवाह हो जाता है। इस फिल्म में देशभक्ति, प्रेम, न्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का संदेश दिया गया है और इसके साथ ही शंकर जयकिशन का संगीत और खुदा भी आसमां से और ये मौसम भीगा भीगा है जैसे गीत फिल्म की खास पहचान बने थे।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, धरती फिल्म की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसका भव्य फिल्मांकन, प्रभावशाली अभिनय और मधुर संगीत शामिल है। और ये फिल्म केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, देश प्रेम और मानवता की जीत का संदेश देने वाली एक यादगार फिल्म है, जिसे अपने समय में दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त 9:30 हो चुके हैं और कार्यक्रम की इस कड़ी में आइए सुनते हैं एसएमएस बेस्ड ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन।

और इस प्रोग्राम में हमें इंतजार रहता है आपके मेल का, और हम लेकर आते हैं कुछ चुनिंदा फिल्में। आज की फिल्में रहेंगी बॉर्डर 2, आपकी खातिर, आक्रोश, एक पहेली लीला और राबता। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airfmshimla@musicmail.com। और चलिए फिर हमें हैं आपके मेल के आने का इंतज़ार। कीजिए प्यारा सा मेल एफएम शिमला के नाम।

और बहुत ही तेज तरार गति के साथ आपके मेल आना शुरू हो चुके हैं। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का हमें मेल मिला है और बॉर्डर 2 फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। इसी फिल्म के लिए हमें बहुत सारे मेल प्राप्त हुए हैं। कृष्णा पाक दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सी टी दीवाना नमस्कार लिखकर भेज रहे हैं कि हमें इस फिल्म का गीत सुना दें। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, मनदीप, और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, कुमकुम, गुड़िया, विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, मोताला महाराष्ट्र से आपका हमें मेल प्राप्त हुआ है इसी फिल्म के लिए। और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद, गुलाम साबिर और मेहराज जहां का हमें मेल मिला है। और MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी हमें मेल कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है शिमला से, और मेल करने वाले हैं किरण ब्रागटा, राहुल और नेहा ब्रागटा। चलिए फिर बॉर्डर 2 फिल्म का गीत सुनते हैं।

अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत, इसी बीच आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। बहुत सारे मेल आपके हमें प्राप्त हो रहे हैं और कुछ एक हमारे श्रोता है जो एक अपना जो मेल है वो कम से कम 5 से 10 बार कर चुके हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपना जो मेल है वो एक बार में ही हमें भेजें ताकि आपका मेल शामिल करने में हमें आसानी हो। रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा और रुचिका रामेकर जो है मेल कर रहे हैं और आपकी खातिर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज, कमला, भानु प्रकाश, गीतिका और खोरवाल का हमें मेल मिला है। और धौलापुर यूपी से मुकेश, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का हमें मेल मिला इसी फिल्म के लिए। और इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल का हमें मेल मिला है। और धाड़ी नांदोला महाराष्ट्र से कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे हमें मेल कर रहे हैं। और गांव टोरोवाल नवांशहर पंजाब से मेल हमें प्राप्त हुआ है गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और वामिक और वाणी थांदी हमें मेल कर रहे हैं आपकी खातिर फिल्म के लिए। पद्मा टॉकीज़ ने पानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र शाह का हमें मेल प्राप्त हुआ है। और अगला मेल हम शामिल करते हैं, ये हमें मिला है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा आपकी खातिर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं।

चलिए अब आपके मेल शामिल करते हैं। मालवा रेडियो श्रोता संघ आलोट जिला रतलाम एमपी से मेल कर रहे हैं जगदीश धाकड़, नायमा रंजू, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ मेल कर रहे हैं। मुलानपुर दाखा से राजेश, बिट्टू, संजीव और गोटना जैन का हमें मेल मिला है आक्रोश फिल्म के लिए। संभाजीनगर से राजेश सावले, राजेश, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल राजेश हमें मेल कर रहे हैं। मोहल्ला मंसूर गुंडलवाड़ा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, जी आर पॉल और विद फैमिली आप जो है एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं और आपने लिखा है कि किसी भी गीत में हमारा मेल शामिल कर ले। देखिए आपका जो मेल है वो शामिल हो चुका है। छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा का हमें मेल प्राप्त हुआ है। और इसके बाद हमें अगला मेल शामिल हुआ है शिमला हिमाचल से फातिमा वेलदार, सोनम वेलदार, अस्मा वली और डब्लू वली वेलदार का हमें मेल कर रहे हैं। और सुल्तानपुर यूपी से यशमीत, यशु, निरंजन, सौम्या, आविरल का मेल हमें मिला है। अगला मेल जो हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं केतनपुरी, लक्ष्मी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है मनाली हिमाचल से और मेल करने वाले हैं किरण शर्मा, विनय शर्मा और कल्पना शर्मा। धर्मशाला हिमाचल से हमें मेल कर रहे हैं अंकित ठाकुर, शिव ठाकुर और विपाशा ठाकुर। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार, रितेश, उत्कर्ष चौहान और समस्तीपुर बिहार से मेल किया है मीरा सिंह, ज्योति सिंह। रोहतास बिहार से सोनम और अनामिका सिंह का हमें मेल प्राप्त हुआ है। राजस्थान से अनूप सिंह, नथावत, धीरज सिंह, सागर पमार और भानु प्रताप सिंह हमें मेल कर रहे हैं। और पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत हमें मेल कर रहे हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान और जिशान खान हमें मेल कर रहे हैं आक्रोश फिल्म के लिए।

अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू। और हमारी पसंद का कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं, बाकी जो मेल हम शामिल कर रहे हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं एक पहेली लीला फिल्म के लिए। सनावत से शेख मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और दुलापुर यूपी से मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, मोहिन, ऋतिक, बलबीर हमें मेल कर रहे हैं। और दिल्ली से बोधराज, कमला, गीतिका और भानु प्रकाश का हमें मेल मिला है। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, प्राग टेलर और साथ ही साथ पूना देवांगन और कृष्णा देवांगन हमें मेल कर रहे हैं। और कृष्ण की नगरी मथुरा से हमें मेल प्राप्त हुआ है सबा अंसारी, शकील अंसारी, हीना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि अंसारी हमें मेल कर रहे हैं और इस फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं।

सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का हमें मेल मिला है, और मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस हमें मेल कर रहे हैं। चंडीगढ़ से शेफाली और शेफी, डेविस, बीमला और सतीश और निजा का हमें मेल मिला है, और ताज मंजिल लक्कड़ बाज़ार खंडवा से मोहम्मद रफ़ीक, बेनज़ीर कौसर, मोहम्मद साबिर और मोइन पवार, शंकर लाल और मोहम्मद हसनैन हमें मेल कर रहे हैं, और वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का हमें मेल मिला है, और आखिर में दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और अनविका तनुश्री गुप्ता का हमें मेल मिला है रावता फिल्म के लिए।

तेरी यादों का दिया दिल में जलाए बैठे हैं हम, मोहब्बत का सफ़र अब भी निभाए बैठे हैं। तेरी आंखों में जो देखा था कभी अपना जहां, उस हसीन ख्वाब को पलकों पर सजाए बैठे हैं। मगर वक्त बदला, लोग बदले, बदल गई राहें, मगर तेरे वादों की महक दिल में बसाए बैठे हैं। चांद भी पूछे कभी रातों का पता हमसे, अगर तेरी चाहत की चमक उसको दिखाए बैठे हैं। जख्म गहरे भी मिले, दर्द ने रोका भी बहुत, फिर भी होंठों पर हंसी अपनी सजाए बैठे हैं। इश्क सच्चा हो तो मंजिल भी करीब आ ही जाए, इस यकीन से हर कदम आगे बढ़ाए बैठे हैं।

मोहब्बत की हवा दिल को छूकर गुजर जाती है, हर एक धड़कन तेरी आहट से समर जाती है। तेरी यादों का उजाला साथ चलता है सदा, हर अंधेरी राह भी पल भर में निखर जाती है। तेरी मुस्कान में जैसे कोई सा जादू बसा है, गम की हर एक शाम हंसकर ही गुजर जाती है। फासलों से प्यार की गहराई कम होती नहीं, सच्ची चाहत हर परीक्षा से उभर जाती है। दिल ने जब भी तेरा नाम अपनी दुआ में लिया, जिंदगी में हर खुशी दामन में भर जाती है।

तेरी खामोश निगाहों ने जो पैगाम दिया, मेरे दिल ने उसी एहसास को हर शाम जिया। तेरे आने से महकने लगे ये सांसों की फिजा, जैसे सूखे हुए गुलशन को नया नाम मिला। इश्क दरिया है कि ना

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र 103.7 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। FM शिमला पर आइए सुनते हैं सदाबहार नगमें।

सदाबहार नगमों की शुरुआत करते हैं मेरे सनम फिल्म से, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है ओपी नैयर ने, और इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। चलिए अगला गीत सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी। जी हाँ, हिंदी फिल्म संगीत के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में से एक है और ये गीत 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में फिल्म का है और इसे महान गायक मुकेश ने अपनी मधुर आवाज़ दी है और गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया है। और इस गीत में नायक अपनी प्रेमिका की तुलना चांद से करता है और वह कहता है कि उसने कभी अपने सपनों में जिस जीवन संगिनी की कल्पना की थी उसकी महबूबा बिल्कुल वैसी ही है।

साथियों, एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, और अब जो गीत हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो प्रेम की एक बहुत ही कोमल और पवित्र भावना को दर्शाता है। और ये गीत फिल्म फकीरा से है, और जिसे अपनी मधुर आवाज़ दी थी गायिका लता मंगेशकर ने, और इस गीत में संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। इस गीत की खास बात यह है कि इसमें प्रेम को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक पूजा की तरह दिखाया गया है, और इसमें नायिका अपने प्रिय को अपने दिल में बसाकर उसे अपनी दुनिया मान लेती है। तो आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाला गीत।

और दोस्तों, अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो हिंदी सिनेमा का एक सदाबहार प्रेम गीत है और इसे गाया है महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इस गीत में एक प्रिया के आने से जीवन में जो खुशी और बहार आ जाती है उसका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, क्योंकि आने और इस गाने के जो बोल है वो आने से उसके आए बहार। और उसके बाद इस गीत की बात करें कि ये इतना फेमस हमारा क्यों है, क्योंकि आज भी इसे बड़े चाव के साथ सुना जाता है। गाना बहुत सरल है लेकिन दिल को छू लेने वाली भावना है, और इसमें बताया गया है कि किसी खास इंसान के आने से ज़िंदगी में कैसे खुशियां, रौनक और बहार आ जाती है। और दूसरी वजह यह है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, उनकी गायकी में जो मिठास, मासूमियत और भावनात्मक गहराई है वो इस गीत को और भी खास बना देती है। और संगीत की बात करें तो संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे बहुत हल्के, मधुर और याद रह जाने वाले सुरों में ढाला है, और इसमें कोई भारीपन नहीं है, बस एक बहती हुई मिठास है।

साथियों, अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फ्रॉम द मूवी जॉनी मेरा नाम। और गीत के बोल हैं, ओ मेरे राजा खफा ना होना। ये एक रोमांटिक और नोक झोंक वाला डुएट सॉन्ग है और इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच हल्की फुल्की शरारत और रूठने मनाने का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। और देवानंद और हेमा मालिनी की कमाल की केमिस्ट्री और किशोर कुमार और आशा भोसले की जानदार आवाज़, 70s का सुपरहिट संगीत और मस्ती भरा अंदाज, आसान मज़ेदार और दिल को छू लेने वाले बोल। लीजिए पेश है ये प्यारा सा नगमा।

0: इसी गीत के साथ ही भूले इसी गीत के साथ ही सदाबहार नगमों का ये सुहाना सफर यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला केंद्र। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
2: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती है और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा,

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
1: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजी